मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। आज की हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के

0: पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से यह समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे की 6:05 हुए हैं। आइए आप और हम सुनते हैं श्रीराम चरितमानस।

सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानी के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया।

चरितमानस। स्वर आशा भोसले का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि बहुत से रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की स्तुति बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये गीत लिया है फिल्म मेरे हम सफर से, लता और मुकेश का गाया, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं पत्थर के सनम फिल्म का गीत, लता और मुकेश किया युगल आवाजों में।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग लता और मुकेश आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मी प्यारे का संगीत गोरा और काला

आकाशवाणी जोधपुर के साथ आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरे एक घंटे के लिए।

0: सूरज उग चुका है, धीरे धीरे अपनी रोशनी बढ़ा रहा है।
1: दिन है बा।
0: इससे पहले कि वो अपने उग्र रूप में आए, आप थोड़ा घूम लीजिए। और थोड़ा आनंद लीजिए हवाओं का, ठंडी ठंडी हवाओं का।

ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। सूरज की चमक ये कहती है कि आइए मेरी चमक में नहाकर आप भी चमक उठिए।

0: ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। दोस्तों, हवा में टॉक्सिन, खाने में टॉक्सिन, इस टॉक्सिसिटी से बचिए।
1: चाल झुक जाए फूलों की डाल,
0: ऊपर से बहुत सारे नशे, स्मोकिंग, ड्रिंक।

ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ढेर सारा डाटा और एक बेचारा मोबाइल। भाई त्यागिए इसको, छोड़िए इसको, आज संडे है, एंजॉय कीजिए। दूर रहिए इस आलसी मोबाइल से। उठिए, घूमिए, फिरिए, दौड़िए, कोई पार्क में आपका इंतजार कर रहा है।

0: ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत।
1: ओ महबूबा, ओ महबूबा।
0: दोस्तों, इंसान ने कंप्यूटर बनाया है
1: मेरी,
0: और फिर इंसान ही कंप्यूटर कोर्स करता है,
1: पास ही।
0: है ना? बढ़िया।

दोस्तों ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, ना किसी तरह का रेडिएशन, ना किसी तरह की कोई पॉल्यूशन, सिर्फ एक रेडियो ही है जो आपको देता है शुद्ध मनोरंजन।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आकाशवाणी जोधपुर के संग आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, और ये चैनल है सूर्यनगरी।

0: तो दोस्तों ये था कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का सफ़र, ये यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 8 बज चुके हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में

0: अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
3: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
4: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और

0: ट्राइकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and

जय हो शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स, शुभ वाणी, लाभ वाणी, मधुर वाणी और आप सबके फेवरेट वाणी आकाशवाणी जोधपुर पर शुरू हो चला है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

तो आइए सबसे पहले रोज की तरह कर लेते हैं कुछ अच्छी सी बात। आस्था अस्ति चेत मार्ग अस्ति, यानी कि आस्था है तो रास्ता है। इफ देयर इज अ फेथ देन देयर इज अ वे, यानी कि दोस्तों जो भी

दोस्तों, अच्छी सी बात के बाद अच्छा सा म्यूजिकल ट्रैक तो बनता ही है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज के इस मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम का सबसे पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको करवा देते हैं हमारी पावरफुल टीम से परिचय। तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर पर है पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख। वहीं कंट्रोल रूम से टेक्निकली प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं इंजीनियर सुनील जयपाल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए म्यूजिकल ट्रैक हमें सुनाएंगे आज शराफत अली। और एफएम उद्घोषक है सत्येंद्र। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड। और इन सब के साथ आप ही के जैसे दो रेडियो लवर्स हाजिर है न्यू न्यू नूतन सोनी और
1: श्रोताओं।

तन सोनी के साथ मैं हूँ सीमा शर्मा। जो भी आप बांटते हैं वही आपके पास पड़ता है, चाहे वो धन हो या अन, सम्मान हो या अपमान, नफरत हो या मोहब्बत। इसलिए श्रोताओं, हमेशा सोच समझकर बांटिए, क्योंकि यही एक दिन लौटकर

क्योंकि यही एक दिन लौटकर आपके पास अवश्य आना है। और नूतन, जो भी हम सोचते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है और अपने लिए रखने की इस बात सोचते हैं, तो वो जो बात होती है वो कुछ गलत हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम अपनी एक ऐसी चीज़ को, यानी कि स्वार्थ की जो भावना है, उसको पनपने देते हैं। इसलिए अगर हम कुछ अच्छा बांटेंगे तो बहुत कुछ अच्छा लौट कर हमारे पास आएगा।

श्रोताओं, प्रोग्राम में कर लेते हैं खास बात। और खास बात तो आज बड़ी ही खास है, वो ये कि डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि डीएमडी के दूसरे चरण का सफल परीक्षण कर लिया है, और इसके बाद तीसरे चरण में एडीएएच और एडीएएम नाम की नई इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित कर रहा है। ये मिसाइलें जो है ना दोस्तों, अत्यधिक आधुनिक होगी, और इसमें जो है उड़ान के दौरान ये मिसाइलें रास्ता बदल सकेंगी, और कई परमाणु वारहेड ले जाने वाली मिसाइलों को भी लक्ष्यों तक पहुंचाने से पहले नष्ट कर सकेंगी। यानी भविष्य में दुश्मन की आधुनिक मिसाइलों के खिलाफ भी भारत के पास जवाब होगा। इसी के साथ जो है हिंदुस्तान की जमीन तक दुश्मन की मिसाइलें पहुंचने से पहले ही आसमान में ही दम तोड़ देगी। और इसी के साथ क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो सुदर्शन चक्र का कवच है वो और भी मजबूत होगा। इस सफलता के साथ जो है स्वदेशी बहुस्तरीय वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसको हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं, उसका रास्ता भी साफ हो गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ मिसाइलों को रोकना ही नहीं श्रोताओं, बल्कि देश के शहरों और नागरिकों को ऐसा सुरक्षा कवच देना है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा।

0: नूतन, जैसे गर्मियां जो हैं वो तो सर चढ़कर बोल रही हैं, और गर्मियों में हम ये देखते हैं कि हमारी जो है ना एनर्जी है, हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, मांसपेशियों का दर्द कह लो या फिर सुस्ती कह लो या थकान कह लो, कई बार हाथ पैरों में बहुत जलन जो होती है, ये भी हमें इस दौरान देखने को मिलती है। तो तुम्हें क्या पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी परेशानियां जो हैं, इसकी निजात पाई जा सकती है अगर हम रेगुलर बेसिस पे शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए एक चम्मच कुछ खाएं तो।
1: क्योंकि सूरज को तो हम, उन महाशय को तो हम नियंत्रित कर नहीं सकते, जो नियंत्रण करना है वो हमें खुद ही
0: खुद पे
1: करना
0: करना
1: है।
0: है, तो एक चम्मच कुछ जो है वो है गुलकंद। जी हाँ श्रोताओं, गुलकंद जो है गर्मियों में विशिष्ट आयुर्वेदिक टॉनिक का काम करता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करके हमारे ब्रेन को पावर प्रदान करता है, यानी कि शक्ति प्रदान करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं श्रोताओं, और उसमें शरीर को ठंडक पहुंचाकर हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है और हीट स्ट्रोक से बचाने में बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ गुलकंद जो है ये पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है श्रोताओं, और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। गर्मियों में गुलकंद जो है शरीर को ठंडक देकर डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी इन सभी से हमारा बचाव करता है, और नियमित सेवन से हम ये देखते हैं कि पेट की जो गर्मी है वो कम हो जाती है, जिससे कई लोगों को पेट की गर्मी से नूतन मुंह के छाले भी हो जाते हैं, उसमें भी इससे लाभ मिलता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हैं उनसे गुलकंद जो है त्वचा में निखार भी लाता है, आपके फेस पे अगर एक्ने हैं तो उनको कम करने में मदद भी करता है। तो देख लो इतनी सारी इसमें खूबियां हैं, तो फिर हम क्यों दूर रहें गुलकंद से? ये मन और दिमाग को शांत रखकर तनाव, चिंता और अनिद्रा की जो समस्या है उनको भी कम करता है। तो करना क्या है आपको, सिर्फ खाना ही तो है एक चम्मच गुलकंद, तो खा लीजिए और शरीर की गर्मी को नियंत्रित कर लीजिए।

श्रोताओं, आज के दिन में और एक विशेष बात है कि आज है राजस संक्रांति। ओडिशा में इसे बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है श्रोताओं, और ये त्योहार जो है मानसून के आगमन का उत्सव होता है। राजस संक्रांति भी इसे कहा जाता है। पहली राजा उत्सव का दूसरा दिन होता है जो 3 दिवसीय उत्सव होता है, और कभी कभी राज्य में ये उत्सव 4 दिनों तक भी चलता है। राजस संक्रांति दिवस को झूला उत्सव के नाम से भी सभी जानते हैं, क्योंकि इस दिन वृक्षों की शाखाओं पर कई प्रकार के झूले लगाए जाते हैं और जो लड़कियां होती हैं लोग गीत गाते हुए झूलों पर खेलती हैं, झूले झूलती हैं। और पहली राजा इस उत्सव का पहला दिन है, राजा संक्रांति दूसरा, जबकि तीसरे दिन को बासी राजा यानी कि पूर्व राजा कहा जाता है। श्रोताओं, राजा संक्रांति को मिथुन संक्रांति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वास्तविक राजा। जी हाँ, इस त्योहार के दौरान लोग धरती पर नंगे पैर नहीं चलते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानसून की बारिश शुरू होने से पहले धरती को आराम देना चाहिए। महिलाएं जो हैं घरेलू कामों से और किसान कृषि कार्यों से अवकाश लेते हैं। सभी लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद में मग्न रहते हैं। महिलाएं जो हैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और विशेष रूप से बनाए गए झूलों पर झूलने में समय बिताती हैं। इन झूलों को दांडी डोली, पटा डोली, चरकी डोली और राम डोली जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और श्रोताओं, अविवाहित युवतियां जो होती हैं वो भी पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और अपने पैरों पर आलता जो होता है उसे लगाती हैं। वसुमती स्नान उत्सव का अंतिम दिन होता है, जो कभी कभी चौथे दिन भी पड़ता है। इस दिन धरती की देवी का प्रतीक माने जाने वाला चक्की का जो पत्थर होता है श्रोताओं, उसको महिलाएं हल्दी के लेप से स्नान कराती हैं। स्नान के बाद इसे फूलों से सजाया जाता है और इसके बाद धरती माता को जो भी मौसमी फल होता है वो अर्पित किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए उत्सव से एक दिन पहले घरों में चक्की के पत्थरों की सफाई की जाती है और मसालों को तैयार करने का काम किया जाता है, और इस दिन को सजा बाजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है तैयारी का दिन। जी हाँ श्रोताओं, कितना अलग सा त्योहार होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर संस्कृति हर बात हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। धरती को आराम देने का दिन हो जाता है राजस संक्रांति।

श्रोताओ, 9 बजने वाले हैं और इस समय हम ब्रेक लेते हैं न्यूज के लिए। तो आइए ले लेते हैं ये ब्रेक और फिर मिलेंगे आपसे इस प्रोग्राम में 9:10 पर।

0: यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट। आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवास

0: वासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने यह बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन दो दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली सीएमएचओ ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है। जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है, यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और वीएमओयू के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहां ओआरएस कॉर्नर बनाए गए हैं।
2: डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा एएनएम घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ओआरएस और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ओआरएस कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूकता।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल

0: संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
1: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है हमारे बहन भाई उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल, पहले 3 रुपए कम हुआ था उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मॉनसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार के बाद आपके फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें हम करते हैं बहुत ढेर सारी बातें और देते हैं ढेर सारी जानकारियां।
1: जी अश्वताओं, जानकारियों की बात नूतन ने कही है तो बता दूं कि आज 14 जून है और 14 जून सन 1595 को सिखों के छठे गुरु, जिनका जन्म माता गंगा और पिता गुरु अर्जुन सिंह के यहाँ हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरु हरगोविंद सिंह जी की। गुरु हरगोविंद सिंह ने एक मजबूत सिख सेना संगठित की थी और अपने पिता गुरु अर्जुन के शासकों के हाथों में 1606 से पहले सिख जो शहीद हुए थे उनके निर्देश अनुसार सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया था। गुरु हरगोविंद सिंह 25 मई 1606 को सिखों के छठे गुरु बने थे श्रोताओं, और वे इस पद पर 28 फरवरी 1644 तक रहे। गुरु हरगोविंद सिंह जी जो थे, ये पहले सिख पंथ निष्क्रिय था, उसको इन्होंने बहुत ही कहते ना कि एक गाइडलाइन दी और प्रतीक रूप से अस्त्र शस्त्र धारण करके हर गोविंद गुरु के तख्त पर बैठे थे। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध प्रशिक्षण और युद्ध कला में लगाया था। बाद में वो कुशल तलवारबाज और कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर हो गए थे। तमाम विरोधों के बावजूद हरगोविंद जी ने अपनी सेना संगठित की और अपने शहरों की किलेबंदी की थी श्रोताओं। 1609 में उन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण किया। इसमें संयुक्त रूप से एक मंदिर और सभागार है, जहां सिख राष्ट्रीयता से संबंधित आध्यात्मिक और सांसारिक मामलों को निपटाया।

0: जा सकता है।
1: इसी के साथ श्रोताओं, आज जयंती मना रहे हैं हम राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता केदार पांडे की, जिन्होंने मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 12 नवंबर 1980 से 1982 तक भारत सरकार में रेल मंत्री के रूप में काम किया था।

0: श्रोताओं, रक्तदान महादान है क्योंकि ये किसी को नया जीवन देने का अवसर प्रदान करता है और आपका थोड़ा सा रक्त किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। और रक्त का कोई कारखाना तो होता नहीं है श्रोताओं, इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर सेवा है श्रोताओं। और जब आप रक्तदान करते हैं तब किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण बन जाते हैं। तो इसी जो ये जो सोच है रक्तदान का जो काम है, इसको महत्व देने के लिए, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इसी पर बात करने के लिए हम फोन आउट माध्यम से आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल से, जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एम्स जोधपुर में। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, आज विश्व रक्तदाता दिवस है सर, तो सबसे पहले हम इसके महत्व पर ही बात करना चाहेंगे सर।
1: तो मैम देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस एक्चुअली आज कार्ल, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। इन्होंने ही हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, जो जिससे हमें पता चलता है पेशेंट का क्या ग्रुप है एबीओ, इसकी इन्होंने डिस्कवरी करी थी और इसी की खोज करी थी। इससे हमें सबका ब्लड ग्रुप पता चलता है और इसलिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का ये भी महत्व है कि आज हम उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, खून कहीं बनाया नहीं जा सकता, वो एक एक इंसान से ही दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। तो इसी की मानता, इसी की अहमियत को रखते हुए आज ये दिन मनाया जाता है। आज डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे है।
0: जी सर। और सर, किस एज ग्रुप के व्यक्ति का जो है वो रक्तदान कर सकता है, कौन से एज ग्रुप के जो लोग हैं?
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 18 से 65 वर्ष के लोग रक्तदान कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि जो पहली बार डोनेट करने आ रहे हैं वो 60 साल के बाद नहीं कर सकते। मतलब जो पहली बार डोनेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनकी उम्र 60 साल तक ही वो कर सकते हैं, पर जो पहले डोनेट कर चुके हैं वो 65 साल तक डोनेट कर सकते हैं।
0: जी सर, बिल्कुल। और गैप कितना रखना चाहिए सर, कितने अंतराल से आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं?
1: हाँ, तो इसमें मैम हमारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बना रखी हैं वो ये कहती हैं कि जो पुरुष हैं वो हर 3 महीने में डोनेट कर सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में। इसमें इनफ टाइम है कि आराम से हमारा खून इस बीच में पूरा बन सकता है, क्योंकि खून तो डोनेशन के कुछ हफ्तों में ही पूरा बन जाता है। फिर भी 3 महीने पुरुषों के लिए और 4 महीने महिलाओं के लिए ये अंतरकाल रखा गया है।
0: जी सर। और कौन सी बीमारी के जो व्यक्ति हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं?
1: मैम इसमें मैम हमारे आते हैं कुछ लोग जो परमानेंट, बिल्कुल उनसे कभी हम नहीं दे सकते जिंदगी में, कुछ होते हैं टेम्परेरी, उनको रखा जाता है कि अभी नहीं उनसे डोनेशन करवा सकते, पर बाद में जब ठीक हो जाए तो कर सकते हैं। इसमें परमानेंट जो लोग हैं जिनसे हम नहीं कभी रक्तदान ले सकते, वो हैं HIV के पीड़ित लोग, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, या जिनको कोई हार्ट की बीमारी, हृदय रोग हो रखा हो, कैंसर की बीमारी है ना, जिनको क्रोनिक लिवर या किडनी का रोग हो रखा हो, और जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो, सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वाले लोगों को हम नहीं कर सकते। और अगर हम टेम्पररी डेफरल की बात करें तो जैसे जिनको को मलेरिया हो रखा है उनका 3 महीने तक हम नहीं ले सकते, डेंगू में 6 महीने तक नहीं ले सकते।
0: जी सर।
1: और कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो तो उसमें 12 महीने तक नहीं ले सकते। तो ये हमने मेनली इन सब लोगों से हम नहीं ले सकते।
0: जी सर, यानी कि जो भी श्रोता सुन रहे हैं, यदि वो आज जागरूक होते हैं, अगर वो मूड बनाते हैं रक्तदान का, तो ये जो आपने जो भी डिजीज बताई, वो वाले जो लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते। और सर, वैसे तो रक्तदान के लाभ ही नजर आते हैं, लाभ बहुत होते हैं, लेकिन कोई संभावित नुकसान भी है सर?
1: नहीं मैम, एक्चुअली लाभ ही है, कोई भी नुकसान नहीं है। इसको लेके बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं कि कोई डोनेशन से, ब्लड डोनेशन से वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्वस्थ डोनर है वो, उनको कोई कमजोरी नहीं होती, कोई इम्यूनिटी उनकी कोई कम नहीं होती।
0: ये बहुत मिथ है सर अभी भी।
1: हाँ, ये सारी मिथ्स हैं।

0: उनकी बॉडी 24 से 48 घंटे में उनका जो भी ब्लड लॉस हुआ होता है उसका फ्लूइड कंपोनेंट वो रिकवर कर लेता है, और रेड सेल जो भी उनके डोनेशन से गए होते हैं वो कुछ ही हफ्तों में भरपाई हो जाती है बॉडी से, तो कोई भी कमजोरी कुछ भी नहीं होती। और रक्तदान के बाद हम हर डोनर को उस दिन रेस्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने के लिए सारी पोस्ट डोनेशन एडवाइस हम अच्छी तरह देते हैं।
1: जी सर, अब सर मिथ की बात हो ही रही है तो एक हमने सुना है कि जो लोग बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: मैम हाँ, पर तुरंत नहीं कर सकते। टैटू
1: ओके,
0: या किसी ने पियर्सिंग करवा रखी है या किसी ने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट लिया है तो उनको 12 महीने तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे उन पे हमें पता उन ये इन सब प्रक्रियाओं से हेपेटाइटिस का रिस्क होता है, तो हमें 1 साल तक वो नहीं कर सकते। 1 साल के बाद वो बेझिझक दान रक्तदान कर सकते हैं।
1: ओके, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बॉडी पर टैटू बनवा लिया है तो वो लाइफ टाइम ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: हाँ जी
1: जी सर,
0: बिल्कुल, ऐसा
1: और
0: बिल्कुल नहीं।
1: रक्तदान के बाद क्या बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए सर?
0: हम देखिए, रक्तदान के बाद हम हर डोनर को यही एडवाइस करते हैं कि पहले उस दिन वो उस दिन एक्स्ट्रा पानी पिए, ज्यादा पानी पिए या नींबू पानी लें, शिकंजी लें, और उस दिन वो ज्यादा कसरत, अगर लोग कसरत करने के आदि हैं, ज्यादा कसरत ना करें, ज्यादा भारी चीजें ना उठाएं, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह ना करें। फिर हम उनको एडवाइस देते हैं कि अगर उनको मान लो कभी चक्कर आ रहे हैं डोनेशन के बाद, वो घर चले जाओ, हल्का सा भी उनको लग रहा है तो वो बैठ जाए, अपने पैर ऊपर कर लें, टाइट कपड़े पहन रखें तो उनको थोड़ा सा लूजन कर दें, और सांसें डीप सांसें लें, और हमें फिर कॉन्टैक्ट करें अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, रक्तदान के टाइम पे जो सुई लगाई जाती है वहां पर हम एक बैंडेज लगाते हैं। हर रक्तदाता को ये ध्यान रखना है कि डोनेशन के बाद वो अगले 5 घंटे तक उस बैंडेज को नहीं हटाएं और उसको ड्राई रखें, उसको गीला ना करें, और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें संपर्क करें, या अगर उनको लग रहा है कुछ नीलापन उनके वहां से उनको स्किन के अंदर अपनी त्वचा के अंदर दिख रहा है कि खून फैला है तो वहां पे थोड़ी थोड़ी देर में कोल्ड पैक लगाएं 24 घंटे तक। और सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि हम लोगों को हर रक्तदाता को बोलते हैं कि खून के बाद उनको आयरन रिच फूड खाना है, और हमारे इंडिया में आयरन रिच फूड बहुत सारे हैं, पालक, मेथी, सरसों, दालें, छोले, तो हम उनको सारी एडवाइस करते हैं कि ये चीजों का ध्यान रखना है रक्तदाता के बाद, रक्तदान के बाद।
1: जी सर, और एक बार में कितना रक्तदान किया जा सकता है सर?
0: तो इसका मैम एक बारी में अगर आपका वजन 45 किलो है तो 350 ml लिया जाता है, और किसी का 55 किलो है उनसे 450 ml लिया जाता है, यानी कि आधे लीटर से भी कम खून निकाला जाता है, और हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है।
1: बिल्कुल सर, और हम बात करें रक्त की आवश्यकता की, जरूरत की, तो किन किन बीमारियों में जो है रक्त की आवश्यकता होती है?
0: मैम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तो आएगा कि जो हमारे इमरजेंसी ट्रॉमा पेशेंट होते हैं, जो दुर्घटना पीड़ित होते हैं या चोट पीड़ित होते हैं, जो बिल्कुल आते हैं इमरजेंसी में, उन पेशेंट्स में बड़े ऑपरेशन जैसे कार्डियो थोरैसिक सर्जरीज में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में खून की जरूरत पड़ती है, सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स में, थैलेसीमिया, सिकल सेल, कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ल्यूकीमिया के पेशेंट, हीमोफीलिया, डेंगू, इन सब पेशेंट्स में हमें रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है।
1: एक सर, थैलीसीमिया बीमारी के बच्चों को बार बार ब्लड देना होता है सर,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ जी।
1: उनके लिए क्या व्यवस्था होती है?
0: मैम हमारे पास उनके लिए ये व्यवस्था, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर 2 से 4 हफ्ते में थैलीसीमिया के बच्चों को आना पड़ता है ब्लड चढ़ाने के लिए, तो उनको पहली बात तो निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, उनको किसी भी रिप्लेसमेंट डोनर की जरूरत नहीं होती, उनको कोई भी डोनर साथ में लाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हमारे एम्स जोधपुर में ल्यूको डिप्लीटेड स्पेशल ब्लड भी मिलता है, जिनमें उस ब्लड में उनके लिए स्पेशल हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कोई भी ल्यूकोसाइड या WBC जैसे कहते हैं उनके, वो रक्त उनके नहीं होता है जो दिया जाता है उनको, और साथ ही हमारे एम्स जोधपुर में उनके लिए एडवांस टेस्टिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि ये थैलेसीमिया के बच्चों में जैसे हम कहते हैं एक एंटीबॉडी, रेड सेल एंटीबॉडी बार बार ही बन जाती है, तो उसकी एडवांस टेस्टिंग भी करी जाती है, तो मेन हर थैलेसीमिया के बच्चे के लिए निःशुल्क रक्त अवेलेबल है।
1: वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा है। और सर, कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करवाना चाहे तो उसको क्या करना होगा सर? जैसे आज

0: हमारी बातचीत सुन के भी बहुत सारे श्रोता इंस्पायर होंगे, और आज वर्ल्ड डोनर ब्लड डोनर डे भी है, तो किसी के मन में विचार आए कि वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा सबसे पहले?
1: मैम उसके लिए वो कोई भी नजदीकी सरकारी एनजीओ बेस्ड ब्लड बैंक में जा सकते हैं या शिविर ब्लड डोनेशन कैंप में जा सकते हैं। जैसे वो ई रक्तकोष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे जाके ये पता कर सकते हैं आसपास उनके एरिया के कौन से ब्लड बैंक हैं और कौन से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं। ई रक्तकोष से उनको पता लग सकता है। वहाँ पे जाके बेसिक स्क्रीनिंग काउंसलिंग उनको करनी है, जिसमें उनका बीपी, वेट, हाइट और अच्छे बेसिक मेडिकल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पूरे 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर और फिर उनका डोनेशन हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर 15 से 20 मिनट में ये कर सकते हैं।
0: जी सर, और वो ब्लड डोनेट कर दे, उसके बाद उस व्यक्ति को कूपन या कुछ सर्टिफिकेट मिलता है सर?
1: हाँ जी मैम, तो हर वॉलेंट्री स्वैच्छिक रक्तदाता को डोनेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना। ई रक्तकोष से भी वो डोनेशन के बाद अपना प्रमाण पत्र या डोनेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जो भी रिप्लेसमेंट डोनर है उनको उनके पेशेंट के लिए रिप्लेसमेंट कूपन मिला जाता है।
0: जी सर, आज हमारे श्रोताओं को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली है सर, बातों के माध्यम से। और चलते चलते सर, म्यूजिक के बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा सा ही होता है, तो बात करते हैं म्यूजिक की। तो सर, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सर, हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे।
1: मैम मेरे को पसंद है, शायद रोजा मूवी का सॉन्ग था, आप सही बताएंगे, पर तुम मिले दिल खिले।
0: ओके, तुम मिले दिल खिले सर, बहुत अच्छा सॉन्ग है सर। आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर,
1: हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।

0: जी श्रोताओं, रविवार की सुबह सुहानी लगती जैसे कोई कहानी। चिड़ियों का मधुर संगीत मन को देता नई प्रीत। आओ मिलकर हंसे गाएं, इस दिन को यादगार बनाएं। जी श्रोताओं, संडे यानी कि रविवार केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे सप्ताह की थकान को मिटाकर नई एनर्जी को भरने का अवसर है। तो इस खूबसूरत दिन का स्वागत आप ही जानते हैं कि हम कैसे करते हैं। जी हाँ, इस खूबसूरत दिन को और खूबसूरत हम बनाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट मेहमान का रविवार के साथ। और श्रोताओं, आज के हमारे मेहमान जो हैं और आज के इस रविवार की सुबह को और खूबसूरत जो बना रहे हैं वो हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा। आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पंचकर्मा डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: सर, जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारा थैंक्स देंगे कि आपने संडे में अपना समय कुछ हमें भी दिया है और हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए आप फोन पर अवेलेबल हैं, तो इसके लिए एक बार और आपका थैंक्स बनता है सर।
1: थैंक यू।
0: सर, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि संडे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है वैसे तो, क्योंकि हम री एनर्जाइज करते हैं खुद को बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारी पेंडिंग लिस्ट होती है, जो बढ़ चुकी होती है, वो भी संडे को ही जो है ख़त्म होती है। तो किस तरीके से आपका संडे शुरू होता है और कैसे ये सफ़र संडे की शाम तक पहुंचता है?
1: जी, एक्चुअल में जो रविवार का दिन है
0: जी सर।
1: वो हमारी दिनचर्या की शुरुआत इससे शुरू होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे मान के चलता हूँ कि हमारा जो दिनचर्या, जो रविवार की दिनचर्या है,
0: जी सर।
1: वो शनिवार की रात्रिचर्या से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी रात्रिचर्या अगर प्रॉपर है तो हम उसको प्रॉपर वे में, दिनचर्या को, संडे का जो डे है
0: जी
1: उसको
0: सर,
1: प्रॉपर वे में एंजॉय भी कर पाते हैं और प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी कर पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बेसिकली जैसे डे टू डे सीजनल भी होता है कि कई बार ऐसा संडे ऐसा निकलता है कि सैटरडे इतना हेक्टिक होता है, या फिर सीजनली जैसे अभी योगा डेज आया हुआ है तो उसमें पर्टिकुलर समय निकालना पड़ता है उस चीज के लिए।
0: जी।
1: मेरा जो रविवार का जो रहता है बेसिकली, वो यूं मान के चलिए आपकी सुबह संडे वाले दिन 6 बजे के आसपास मैं उठता हूँ
0: जी सर।
1: और उठ करके अपना जो रूटीन वर्क है उसमें सबसे पहले हल्का सा वार्म अप करके, पानी पीना एक कंटिन्यू उसमें रूटीन में रखा है मैंने, और
0: जी
1: थोड़ा सा वार्म अप करके
0: जी
1: बाहर राउंड करके आता हूँ।
0: ओके
1: उसके बाद में हमारे जस्ट सामने कुछ पक्षियों के लिए हमने वो बना रखा है, तो उसके अंदर उनको, पक्षियों को दाना डालना, वो उसमें करीबन 15-20 मिनट मेरे चले जाते हैं।
0: जी सर।
1: उसके बाद में रूटीन वर्क के अंदर थोड़ा सा चाय का रहता है और अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं।
0: जी सर। तो सर बिल्कुल वो रूटीन जो है आपका, आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें कि मॉर्निंग की
1: जी जी
0: शुरुआत आपने बहुत पॉजिटिव की, आपने बिल्कुल अपने आप को फ्रेश भी केयर के एकदम से, कहते हैं ना कि वार्म अप भी किया आपने, और जो बहुत प्यारी चीज़ लगी कि आप जो सामने पक्षियों का घर है उसमें दाना भी आप उनको डाल के आए, और ये सारी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं सर, जब खुद को अपन वार्म अप कर लेते हैं, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ आसपास के माहौल का भी ध्यान रखते हैं, तो सुकून जो है वो यहीं से शुरू हो जाता है। फिर आपका सफ़र किस तरह आगे बढ़ता है?
1: उसके बाद में हल्का सा वार्म अप होने के बाद में
0: जी
1: 5 से 10 मिनट का हल्का, जो बॉडी के नीडफुल जो भी अपना एक्सरसाइज और योग का प्रोग्राम रहता है उसको
0: जी
1: एडोप्ट करता हूँ मैं।
0: ओके
1: बेसिकली फुल योगा नहीं करके, जो रूटीन वर्क के अंदर अगर लगता है कि इस पार्ट्स के लिए ये किया जाना चाहिए, जैसे गर्दन के लिए किया जाना चाहिए, कमर के लिए, घुटने के लिए,
0: जी सर।
1: बेसिक बेसिक थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का वो रखते हैं और हल्का सा अनुलोम विलोम का श्वास प्रवास की ओर रखते हैं।
0: जी जी सर। योगा के बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज आपकी हो गई, आपने खुद को रिफ्रेशिंग, आप मोड पे आ गए हैं, फिर बात आती है सर ब्रेकफास्ट की, तो यहाँ पे किस तरह की चॉइसेस आप रखते हैं, मतलब जो डेली रूटीन से हटकर कुछ स्पेशल होता है या फिर नॉर्मल होता है, या आपकी पसंद का होता है या फैमिली की पसंद का होता
1: फैमिली के पसंद से रखते हैं एक्चुअल में।
0: है?
1: वो
0: जी
1: बेसिक
0: सर।

0: जो चलता रहता है वो तो होता ही है। कभी कभी हल्का सा ये मान लीजिए कि दलिया को प्रायोरिटी देता हूँ मैं, मिक्स
1: ओके
0: वेजिटेबल के साथ में दलिया बनवाना या उपमा बनाना,
1: जी सर
0: तो हमेशा एक जैसा रूटीन नहीं होता संडे का, लेकिन
1: जी
0: मेरी प्रायोरिटी होती है उस दिन ये बन जाता है।
1: जी
0: बाकी बच्चों के हिसाब से जो फैमिली में बनता है वही मैं भी अडॉप्ट करता हूँ।
1: सर यहाँ एक और दिमाग में दिल में बात आ रही है, क्या कभी किचन की भी सैर होती है संडे को?
0: हाँ, बेसिकली हमारा जो मोटिव है,
1: जी
0: हम क्या है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और
1: जी
0: आयुर्वेद के अंदर स्पेशली अगर आपको थोड़ा बहुत किचन का वर्क आता है तो ही आप आगे चल करके एक्सपर्ट हो सकते हैं।
1: राइट सर
0: तो किचन में मेरा भी पूरा इंटरेस्ट रहता है, बहुत
1: जी
0: सारी चीजें हैं जो मैं भी बना लेता हूँ
1: जी
0: रूटीन
1: जी
0: में
1: जी
0: जब
1: तो
0: कभी
1: बस हम वही आ रहे
0: जी
1: थे
0: जी जी जी जी
1: कि ये
0: जी
1: जो उपमा, ये

0: दिमाग में, दिल में बात आ रही है। क्या कभी किचन की भी सैर होती है संडे को?
1: हाँ, बेसिकली मेरा जो मोटिव है,
0: जी
1: हम क्या है कि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, और
0: जी
1: आयुर्वेद के अंदर स्पेशली अगर आपको थोड़ा बहुत किचन का वर्क आता है तो ही आप आगे चल करके एक्सपर्ट हो सकते हैं।
0: राइट
1: तो
0: सर।
1: किचन में मेरा भी पूरा इंटरेस्ट रहता है, बहुत
0: जी
1: सारी चीजें हैं जो मैं भी बना लेता हूँ
0: जी
1: रूटीन
0: जी
1: में
0: जी
1: जब
0: तो
1: कभी
0: बस हम वही आ रहे
1: वा
0: थे
1: जी
0: कि ये जो
1: जी
0: उपमा, ये दलिया, ये जो आपने बात कही, कई बार ऐसा होता है ना कि फैमिली भी चाहती है कि आज तो कुछ डिफरेंट टेस्ट हाथों से आए। तो क्या ये कभी-कभी आप भी बनाने का शौक रखते हैं?
1: हाँ, मैं भी बनाने का, एक्चुअल में मुझे चपाती बनाने का रहता है, चपाती मैं अच्छे से बना लेता हूँ, और थोड़ा सा भिंडी की सब्जी भी मुझे बना
0: क्या
1: लेता हूँ।
0: बात है सर,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बढ़िया।
1: जी जी जी
0: नहीं, हमारे श्रोता जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो भी मोटिवेट होंगे आपसे, और जरूर किचन का रुख जो अभी तक नहीं करते हैं वो भी उस तरफ जरूर करेंगे।
1: नहीं, वो एक्चुअल में करना चाहिए, क्योंकि हमेशा डिपेंडेंसी अच्छा नहीं होता है,
0: राइट
1: थोड़ा बहुत अपने के ऊपर भी इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर सब सारी चीजें होती हैं। कॉलेज लाइफ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये चीजें, तो
0: जी
1: फिर
0: जी
1: बाद में धीरे धीरे कभी टाइम मिलता है तो उस चीज को फॉलो कर लेता
0: फॉलो
1: हूँ।
0: कर लेते हैं। जी सर, श्रोताओं आपको हम बताएं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर एंड HOD पंचकर्मा डिपार्टमेंट, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और सर, अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे की जो क्वेश्चन लिस्ट है उसमें। संडे का दिन एक और खास तौर से स्पेशल बन जाता है। हमारे बहुत पुराने दोस्त जो पीछे रह जाते हैं, कहीं और दिशाओं में चले जाते हैं, आपके जो प्रोफेशन है शायद उसमें आपके साथ नहीं हो, उन्होंने अलग प्रोफेशन अडॉप्ट किया हो, लेकिन संडे एक ऐसा दिन है जो सबको मिलना और मिलाना वाली बात जो है उसे भी उसमें भी हेल्प करता है। तो
1: जरूर
0: क्या
1: जरूर,
0: फ्रेंड्स को भी आप कुछ टाइम देते हैं संडे में?
1: एक्चुअल में मेरा नेटिव तो जयपुर से है, और बाकी अभी जोधपुर के अंदर 15 साल से मैं जोधपुर में हूँ 2010 से। तो
0: जी।
1: जो बेसिक जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो तो आउट ऑफ राजस्थान है कुछ लोग, तो कुछ राजस्थान के डिफरेंट सिटीज में होती है, तो उनसे तो फोन से ही बातें होती हैं। बाकी अपने जो 15 ईयर्स के अंदर जोधपुर में भी काफी अच्छा सर्किल बन जाता है, जो फेमिलियर हो जाते हैं, तो
0: जी सर,
1: उनसे मिल करके उनके कोई पॉजिटिव बातें होती हैं उनको खुद एडॉप्ट करते हैं, उनकी जो लगता है कि उनकी कोई हेल्प हो सकती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं,
0: जी
1: ये रूटीन वर्क रहता है डेली।
0: जी नहीं सर, फोन से भी कांटेक्ट में रहना, उनको टाइम
1: हाँ,
0: देना, वो एक
1: फोन
0: अलग
1: से
0: चीज़ हो
1: कांटेक्ट में तो
0: जाती है।
1: आउट ऑफ जो
0: जो
1: राजस्थान या जोधपुर से हैं उनसे
0: हाँ
1: फोन से
0: हाँ
1: कांटेक्ट में रहते हैं, बाकी जोधपुर से जो रहते हैं उनसे बेसिकली एवरी संडे को तो नहीं होता, पर मंथ में एक दो बार तो संडे
0: हो ही जाता
1: के बाद हो
0: है।
1: जाता है।
0: जी सर। सर, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि चिड़ियों को दाना डालना, तो मतलब कहीं ना कहीं सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपके दिल में कहीं ना कहीं रहती हैं, तो
1: नहीं,
0: क्या
1: वो
0: उस
1: तो बेस्ट
0: तरफ?
1: है, वो उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मन में रिगार्ड्स नहीं है किसी के लिए तो फिर अपना लाइफ का जीने का कुछ मतलब भी नहीं है।
0: जी
1: और बेसिकली जो मेरा मोटिव रहता है वो है अपने जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत समय समाज के लिए, देश के लिए दिया है,
0: जी
1: तो किसी भी एंगल में अगर उनका अपन मदद कर सकते हैं, उनसे बात करके, उनके ट्रीटमेंट करके, उनको कुछ मेडिसिन दे करके, तो मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आती है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा भी कहीं समाज में, देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी सर, बहुत अच्छी बात है ये। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस सब में आ जाए तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है।
1: नहीं, जरूरी है।
0: सर, ये तो बातें हो गई, लेकिन एक और अभिन्न हिस्सा मैं कहूँगी संडे का रहता है, वो है मूवीज़ या फिर म्यूज़िक। तो क्या मूवीज़ को भी टाइम देते हैं आप संडे में?
1: पहले कॉलेज लाइफ में तो था, अभी थोड़ा कम है, क्योंकि
0: जी
1: रूटीन वर्क के अंदर बेसिकली क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग वाला है, पंचकर्मा डिपार्टमेंट है, तो
0: जी
1: उसमें कई बार संडे को भी हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता
0: जाना
1: है,
0: पड़ता
1: वो
0: है।
1: और मैनेज करना पड़ता है, जाएंगे भी नहीं तो, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट चलता है वहाँ,
0: जी सर,
1: तो
0: जी सर,
1: उसमें बिजी रहना पड़ता है। तो मूवीज को तो नहीं है, लेकिन बेसिकली जैसे मंदिर में कभी जा करके थोड़ा सा अपना जो चेंटिंग्स है या
0: हाँ
1: पूजा
0: जी
1: है वो जरूर मैं फॉलो करता हूँ उस चीज
0: जी
1: को।
0: जी तो सर, म्यूजिक कभी सुनते हैं कभी? मान लीजिए, चलिए मूवीज तो
1: हाँ, म्यूजिक
0: नहीं,
1: सुनते हैं, जब म्यूजिक में वो पार्ट अलग हो गया ना, म्यूजिक में जैसे भजन वाला पार्ट है
0: भजन
1: तो
0: वाला
1: उसको मैं फॉलो
0: पार्ट।
1: करता हूँ, बाकी गो सॉन्ग्स में नहीं करता,
0: अच्छा,
1: जैसे शिव जी के भजन है अपने,
0: हाँ
1: हनुमान
0: जी
1: जी के भजन है, इस तरह
0: हाँ
1: के
0: जी
1: भजन को मैं फॉलो करता हूँ,
0: नहीं
1: सुनता
0: सर,
1: भी हूँ, एंजॉय भी करता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: हाँ,
0: और म्यूजिक किसी भी फॉर्म में हो सर, दिल को सुकून तो देता ही है।
1: बिल्कुल 100% इसको सुकून देता है।
0: जी सर, आप जिस फील्ड से हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने की आपकी कोशिश

0: जरूर रहती होगी।
1: हाँ बेसिकली मेरा मोटिव जो स्टार्टिंग से यही रहा है कि मेरा अंदर से कुछ इस तरह की फीलिंग्स है कि सीनियर सिटीजन्स जो बेसिकली अबोव 50 एज हैं उनके लिए कुछ इस तरह का प्रोग्राम्स इस तरह के कैंप्स में लगाऊं जिससे उनका जो सर्विस है वो थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि हाँ हमने समाज में जो सर्विस दी है उसका
0: जी
1: एक प्रॉपर आउटकम देने वाले कोई है हमारे पास
0: जी
1: में। तो हमने घुटने के इलाज और कमर के इलाज के लिए कुछ स्पेशल थेरेपीज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं और
0: अच्छा
1: कैंप्स भी लगाते हैं। तो
0: ओके
1: सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारी जो प्रोसेस होती है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है वहाँ पर प्रोसेस के लिए। तो
0: ओके
1: काफी सीनियर सिटीजन्स है वो 55 है वो आते हैं घुटने के कमर के लिए और सर्वाइकल के लिए अपना प्रॉपर वे में इलाज लेते हैं वो और
0: अच्छा
1: क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं वहाँ पर।
0: बहुत बढ़िया चीज़ है सर, क्योंकि एज के इस मुकाम पर पहुंचकर जब पूरी ज़िंदगी समाज के लिए परिवार के लिए दे दी और इस वक्त जब कुछ सहारे कम लगते हैं तो उसमें ऐसी सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी
1: जरूर
0: सर, वैसे तो आपने अपना जो टेस्ट है सॉन्ग्स के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई गीत होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, कभी कभी गुनगुना लेते होंगे, तो वो गीत हमारे
1: जरूर
0: श्रोता सुनना चाहते हैं।
1: जरूर जरूर जरूर। एक्चुअल में जो मेरा फेवरेट गीत है
0: जी
1: वो शुरू से वो यही रहा है कि पहले भी था चांद सी महबूबा हो मेरी तब ऐसा मैंने सोचा है,
0: जी
1: ये मेरा फेवरेट रहा है और यूनिक है।
0: सर, आपकी जो स्माइल है वो कुछ इसके पीछे की स्टोरी भी शायद बता रही है।
1: ना का तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
0: चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये दो शब्द जो बोले कि पहले से रहा है और जो स्माइल है आपके चेहरे की, उससे हम इस गीत की जो पीछे की स्टोरी है उसे भी समझ सकते हैं, और जो गीत है उसके बोल आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: कांसी

0: तो सर, ये जो गीत आपने गुनगुनाया है, ये आप अभी भी गुनगुनाते हैं? अभी भी आपका फेवरेट है?
1: एवरी
0: एवरी टाइम?
1: टाइम
0: तो बिल्कुल, जो आपकी मन की इच्छा है वो ज़रूर पूरी हुई होगी। और उस गीत को गुनगुनाते हुए आपका ये जो फेवरेट गीत है, इसे हम भी सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। आप हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू सर।

जी अश्वताओं, ये जो गीत होते हैं ये बहुत अमिट छाप हमारे दिल पे छोड़ जाते हैं। और कुछ और भी ऐसे गीत हैं जिन्हें जब भी हम सुनते हैं तो दिल में वो मूवी, वो अंदाज, वो किरदार और वो सारी बातें जो हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है रिवाइंड में हमारी ज़िंदगी घूम गई है और हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ऐसी ही बातें हम आपको बताते हैं। श्रोताओं, दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर स्टारर फिल्म थी मुगले आजम। जी हाँ, क्लासिक कल्ट मानी जाती है। और इसके जो डायरेक्टर थे के आसिफ, फिल्म को बनाने में उन्हें 12 साल का लंबा वक्त लगा। एक नहीं, 4 बार इन्होंने शादी रची। लेकिन अपनी निजी जिंदगी की बात को अगर हम अलग रखें तो इस मूवी के लिए उन्होंने, कहते ना कि बॉलीवुड के सुपरस्टार जो थे दिलीप कुमार साहब, उसको पृथ्वीराज कपूर साहब को, इन सबको लेकर के जो जोड़ी जमाई थी, जो फिल्म बनाई थी, वो आज भी बॉलीवुड की जैम मानी जाती है। और के आसिफ द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म जितनी शानदार थी उतनी ही इसकी तैयारी भी की गई थी। श्रोताओं, इस फिल्म को बनाने में एक लंबा वक्त लगा। इस जहीन फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर के आसिफ ने अपने करियर में केवल 2 ही फिल्में बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम के आसिफ जो हैं इनकी बात क्यों कर रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज है 14 जून और 14 जून 1944 को इटावा में जन्म हुआ था के आसिफ का।

दोस्तों, दरअसल आज हम जिस क्लासिक दौर को याद करते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो के आसिक से ही हुई थी। फिल्म के सेट से लेकर हर सीन में क्या और क्यों रखना है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आसिफ को ही मालूम रहता था। उसी का नतीजा है कि फिल्म में पेश चाहे शीश महल वाला सेट हो, या फिर फिल्म के लिए छपे स्पेशल टिकट हो, और मोतियों की बारिश वाला सीन तो आपको याद ही होगा, उसमें जो मोती थे ना वो असली थे श्रोताओं। और या फिर क्लासिक संगीत से सजे गीत हो, या फिर शूटिंग के दौरान

0: दौरान रास्ते पर पड़ने वाले सारे बिजली के खंभे जो हैं उनको हटवा देने की जिद हो, सभी में सिर्फ और सिर्फ के आसिफ की ही नजर आते हैं। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा श्रोताओं कि कोई एक फिल्म भले ही टीम वर्क हो, लेकिन के आसिफ नहीं होते तो हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मुगले आजम को कोई दूसरा निर्देशक नहीं बना पाता। फिल्म जब रिलीज हुई थी ना दोस्तों, तो भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार से भी फिल्म देखने लोग आते और तीन तीन दिन तक सिर्फ टिकट लेने लाइनों में ही लगे रहते। और के आसिफ इस फिल्म का सबसे बड़ा जो पक्ष था, मजबूत पक्ष था, वो इसके गाने थे। प्यार किया तो डरना क्या वाले गाने को देखा जाए तो उसमें लगभग कहते हैं कि 10 लाख का खर्च आया था उस जमाने में। लेकिन इस गाने की सबसे खास बात ये थी श्रोताओं कि इस गाने के साथ फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। मौजूदा दौर में जहां फिल्म के गीतों का उसकी कहानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, वहां के आसिफ का लगभग 10 लाख का ये जो गाना है ये एक मिसाल पेश करता है श्रोताओं।
1: श्रोताओं, एक इस नूतन एक बात और इस गाने के लिए कही जाती है कि मुगले आजम का ये जो गाना है जिसकी तुमने अभी जिक्र किया, इसके लिए 105 गानों को रिजेक्ट किया गया था और उसके बाद ये यादगार गाने का निर्माण हुआ था। और इस फिल्म को बेहतरीन बनाना क्योंकि ये चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पहली बार भारतीय सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक जो थे उनका इस्तेमाल किया था। और इस फिल्म की शूटिंग के लिए के आसिफ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे कृष्णा मेनन साहब, उनसे इसकी बकायदा परमिशन ली थी।

श्रोताओं, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व सतीश चंद्र दास गुप्ता की जयंती है, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। वे जिनका जितना सम्मान उनका रसायन विज्ञान का वो करते थे, उतना ही सम्मान बढ़ाई और लोहार के कामों का भी करते थे। उनकी सबसे बड़ी बात थी, हर काम का वे सम्मान करते थे। विज्ञान के साथ साथ वे व्यावहारिक जीवन में भी एक सफल व्यक्ति थे, तो वो केवल इसी कारण।

और श्रोताओं, आज ही के दिन में दर्ज है एक और शख्सियत, एक और नाम जिसे आप और हम कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, फिल्म काई पोछे से जिनका डेब्यू हुआ था, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। फिल्म काई पोछे से इन्हें डेब्यू किया गया था और यही वो वक्त जब अभिषेक बनर्जी की ये जो फिल्म थी वो बना रहे थे और फिल्म में ईशान भट्ट रोल के लिए उन्होंने अप्रोच किया था सुशांत को। इस फिल्म में सुशांत को राजकुमार राव और अमित साय के साथ देखा गया था श्रोताओं। इसके बाद सुशांत को पीके, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया और इन्हीं सभी फिल्मों में अपने रोल से उन्होंने सभी को अपना दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है। और श्रोताओं, आज के दिन यानी कि 14 जून 2000 में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी इस कहते ना कि चकाचौंध वाली दुनिया से सभी को अलविदा कह दिया था।

0: जी अश्रोताओं, तो नमस्कार का जो सफर है वो यहाँ लेगा विराम, क्योंकि वक्त हो चला है और समय जो है वो किसी को नहीं बख्शता। तो बिल्कुल दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को। मैं आपके साथ सीमा शर्मा,
1: और न्यू न्यू नूतन सोनी,
0: दीजिए अनुमति नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 10 बज रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अब सुनेंगे अपना कार्यक्रम चुनमुन।

गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कामिनी दीदी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम चुनमुन। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे रोचक जानकारियां, मजेदार गाने और सीखेंगे कुछ नई बातें। तो चलिए करते हैं आज का सफर इस प्यारे से गीत के साथ।

बच्चों, हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है और इससे जुड़ी हर चीज हमारे लिए जरूरी है। बच्चों, इस दुनिया की प्रत्येक जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, समुंदर, ये रेगिस्तान, ये बर्फीले पर्वत, ये जंगल, ये उद्यान और हमारे आसपास की ये फूलों की रंगीन दुनिया सभी इसी प्रकृति का हिस्सा है। और इस प्रकृति में ऐसे कई तथ्य छुपे हैं जो बड़े ही रोमांचक हैं। तो चलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक सफर पर, जहां मिलेंगे कुछ ऐसे जानवरों से जिनकी खास बातें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार है ना आप? चलिए चलते हैं। सबसे पहले बारी आती है बहुत ही बुद्धिमान जानवर हाथी की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट यानी हाथी की याददाश्त बहुत ही तेज होती है। हाथी कई सालों तक रास्ते और अपने साथियों को याद रख सकता है और बहुत दूर की आवाज और कंपन को महसूस कर सकता है। फिर मिलते हैं समुंदर की मुस्कुराती दोस्त डॉल्फिन से। इसे समुंदर का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। डॉल्फिन आपस में आवाजों और संकेतों से बात करती है और उनको खेलना बहुत पसंद है। ये सोते समय भी अपने मस्तिष्क का एक हिस्सा जागृत रखती है। आगे जानेंगे और भी कई रोमांचक फैक्ट्स। पहले लेते हैं ये स्वीट सा म्यूजिकल ब्रेक।

हमारी रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और उसका खून लाल नहीं नीले रंग का होता है। फिर मिलते हैं हमारी रंग बिरंगी दोस्त तितली रानी से। ये अपने पैरों से स्वाद का पहचान कर सकती है। और हाँ, चींटी के बारे में तो जानते ही होंगे, ये अपने शरीर के वजन से कई गुना अधिक वजन उठा सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। चमगादड़ दुनिया का एक ऐसा स्तनधारी है जो वास्तव में उड़ सकता है। बच्चों, ये दुनिया बहुत ही रोमांचक है। यहाँ हर जानवर की कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए और उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए।

हर जानवर की कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हमें सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करनी चाहिए।

0: बच्चों, आगे हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप बता सकते हैं वह क्या हो सकती है?
1: जी हाँ, वह है पानी। पानी है तो जीवन है, पानी है तो हरियाली है, पानी है तो खुशहाली है। पानी पीने, नहाने, खाना बनाने, खेती करने और पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। परंतु हमें तो पता है ना कि हमारी धरती पर सिर्फ 2.5 से 3% पानी ही पीने योग्य है। इसलिए हमें हर बूंद की कीमत समझनी चाहिए। हम अपने घर से ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के पानी बचाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ना है। पानी की बोतल में अगर पानी बच जाता है तो उसे पौधों में डालना है। नहाने में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं बहाना है। घर में कोई नल टपक रहा है तो बड़ों को बताएंगे और ठीक कराएंगे। बरसात का पानी संचय करेंगे, क्योंकि जल है तो कल है और पानी बचाना सरल है। हर बूंद का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। तो आओ हम सब संकल्प लेते हैं कि पानी की एक एक बूंद बचाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।

बच्चों, मुझे तो नई नई जगहों पर घूमना बहुत ही पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? मुझे लगता है आपको भी पसंद ही होगा, क्योंकि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को और देखने को मिलता है। हम नए लोगों से मिलते हैं, नई भाषा या बोलियाँ सुनते हैं, नए खान पान के बारे में जानते हैं, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थानों को देखते हैं, नई नई जानकारियाँ लेते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों, जो बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, वही अगर हम अपनी आँखों से देखें तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से सिखाती है। जैसे किसी किले को देखकर इतिहास समझा जा सकता है, चिड़ियाघर में जानवरों को करीब से देखकर उन्हें और अच्छे से जाना जा सकता है, संग्रहालय हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। तो इस गर्मी की छुट्टियों में हमें अपने बड़ों के साथ मिलकर किसी नई जगह घूमने का प्लान बनाना है। और हाँ, उस यात्रा में एक छोटी डायरी साथ रखें, वहाँ की रोचक बातें लिखें, प्रकृति

और पर्यावरण को निहारें और उसका ध्यान रखें। बच्चों, हर नई जगह एक नई किताब की तरह होती है जिसमें ज्ञान और अनुभव के कई पन्ने छिपे होते हैं। तो चलिए अभी हम चलते इस गाने की ओर।

मुझो आज हमने जाने जानवरों के अनोखे फैक्ट्स, कई रोचक बातें, पानी बचाने का महत्व समझा और ये भी सीखा कि जब भी मौका मिले नई जगहों को देखिए, उनसे सीखिए और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कीजिए। और हाँ, प्रकृति और पशु पक्षी से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान कीजिए, क्योंकि अच्छे विचार, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार यही बनाते हैं बच्चों को भविष्य का चमकता सितारा। तो इसी शुभकामना के साथ आपकी कामिनी दीदी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम चुनमुन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। आइए सुने सुगम संगीत।

दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे।

जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के

0: फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, फूल मेयार तक नहीं पहुंचा, दामने यार तक नहीं पहुंचा, हो गया वो कफस से तो आजाद, फिर भी गुलजार तक नहीं पहुंचा।
1: फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना।
0: जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दर से सवाली

जर्फ से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, जर्फ से बढ़ के हो इतना नहीं मांगा जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता, और चांद जैसी भी हो बेटी किसी मुफलिस की मगर, चांद जैसी भी हो बेटी किसी मुफलिस की मगर, ऊंचे घर वालों से

0: लब खामोश, आंख वीरा दिल परेशान, ज़ुल्फ़ बरहम लब खामोश, अब तो वो कुछ और भी प्यारे नजर आने लगे।
1: एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे।
0: ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं।

0: के साथ साथ गुलशन में सोचता हूँ बबूल भी होंगे, फूल के साथ साथ गुलशन में सोचता हूँ बबूल भी होंगे, क्या हुआ उसने बेवफाई की, उसके अपने उसूल भी होंगे। तकदीर के गुलशन का
1: शायर। अभी आपने सुना सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दी। हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है लोक संगीत।
1: सतगुरु बादल प्रेमरा मां पर बरसो आए।

श्रोताओं, ये थी लोक संगीत की आखिरी पेशकश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मीर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर के मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ सायला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरों जी जा

0: रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाई खेती बाड़ी रे काम काज का है आपा अपने खेत में करा हा। और किसान भाई खेती बाड़ी रे साथे साथे पशुपालन भी काम काज करे है। कई किसान भाई सब्जियारी पैदावार लेवे, कई किसान भाई चारेरी जी की फसल है उनरो उत्पादन खेतर में ने लिया करे, कई किसान भाई आपरे पुष्परी खेती करिया करे हेर आड़ पाड़े। पुष्परी खेती सु अच्छो जी को मार्केट है किसान भाई ने आपरे मिल जाया करे, ताजा ताजा पुष्प बाड़ी में आपरे तोड़े और मार्केट में आपरे जान बेचे तो चार पैसा रो जी को मुनाफो है वो भी होवे और पुष्पारी जी की गुणवत्ता है वह भी आपरे बनियोड़ी रिया करे। किसान भैया आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई आपा इन महीना रमाइने बागवानी री जी की खेती करा हा, कार्य जी का करा हा, वे आपा किन तरह से कर सका। जीव हमें बात आवे की भाई नींबू वर्गीय जी का फलदार पौधा है वाणा फल गिरने जी की समस्या आप बहुत ज्यादा रिया करे, किसान भाई रोकथाम रे वास्ते कई कर सके। प्लानोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी रे महीने आपरे घोल बनावे और छिड़काव आपने करना चाहिए। नींबू वर्गीय महीने नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, हम जीव बोड़िया भी किसान भाई रे बगीचा रे महीने घनी भायोड़ी है और भात भात जी का बोर है ये भी आपरे लागे है। बेरन महीने कटे छटे भी आपा करा तो इन सुखाई वे के जिका नया पुरोह जेका है वे हल्ली संख्या महीने आवे और हाथे फूल है फल है ये भी आया करे। जिको आपा काटा उन ठोड़ माते फंफूदी नाशी बोर्डेक्स रो जिको मिश्रण है उन रो आपा ने लेप करना चाहिए। नींबू वर्गीय पौधा महीने पर्ण खनक और शिट्र शशिला कीड़ारी रोकथाम रे वास्ते किसान भाई कई कर सके। एसीफेट 75 SP/1 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाइमिथोएट 30 EC/1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दरसू आपा घोल बढ़ावा और छिड़काव करा। इन रहते आते नींबू रे महीने कैंकर जिको रोग है वो भी उजाया करे, इनरे बचाव वास्ते किसान भाई कई कर सके। बोर्डो मिश्रण या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 4-5 लीटर पानी महीने घोल बनावा और 20-25 दिन अंतराल में भले आपा छिड़काव करा। इन रहते किसान बहर बगीचे महीने आंवला जी का रोकड़ा है ए भी आप रहे। आंवला महीने बोरेक्स रो 0.4% और जिंक सल्फेट रो 0.2% घोल बना पर आपा छिड़काव करा। और साथे साथे किसान भाई आप रहे बगीचे महीने छायादार है सजावटी जी का वृक्ष है ए भी आप रहे लगाया करे। फलदार वृक्षों की तरह आपा रेखांकन करा, बढ़िया आपा गड्ढा खुदाई रो जिको कार्य है आड़े पाड़े आपा करता रहा तो इन सो बागवानी रे महीने आपने फायदो होया करे। और फलदार मान लो पौधा किसान भाई आपने लगावे तो 1 मीटर लंबो चौड़ो और 1 मीटर गहरो आकारो आपने बढ़िया आपने खाडो खोदे और इन खाडा ने 10 ले 15 दिन तक खुलो छोड़ देवे क्योंकि हमें जिको ओ मौसम है प्रसाद रो है।

और इन भगती जी का फलदार जी का पौधा है ज्यादा लागिया करे, पकड़ बेगी करे है, आंबा ही लगा सका, दाड़ में ही लगा सका, नींबू ही लगा सका, आंवड़े ही लगा सका, जामुन भी लगा सका। उन गडारा महीने 15 लीटर 20 किलो गोबरी जी की खाद आप बढ़िया मिला दा और पौधो आप लगावा उन पहला 100 ग्राम किनोलफॉस 1.5% चून जी को है वो प्रति गडर हिसाब अपने देवनो चीजे। अब मान लो आप 10 लीटर 15 गड्ढा आप मान लो खोदरा क्या तो हर गडर हिसाब 1.5% जो चून है सगड़ा गडर महीने अपने देवनो पड़े। किसान भाया आ ही जानकारी के भाई इन महीने रे महीने आप बागवानी जी का कार्य करा वह किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

आप सुन रहे थे कृषि जगत। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

झूमती झुमाती खुश मिजाज इस वाटिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपसे बहुत सी बातें होंगी, पर पहले ये बात सुने। एक पिता अपने बेटे के साथ पहाड़ों की सैर पर निकला। अचानक बेटा गिर गया। चोट लगने से उसके मुंह से निकला आह। तुरंत पहाड़ों में से कहीं से आवाज आई, आह। बेटा अचरज में रह गया। उसने फौरन पूछा, तुम कौन हो? सामने से वही सवाल आया, तुम कौन हो? अपनी बात की नकल करते देखकर बेटा गुस्से से चिल्लाया, डरपोक। जवाब मिला, डरपोक। उसने पिता की ओर देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जरा ध्यान दो। इसके बाद पिता चिल्लाया, तुम चैंपियन हो। जवाब मिला, तुम चैंपियन हो। बेटे को थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन कुछ समझ नहीं सका। इस पर पिता ने उसे समझाया कि लोग इसे गूंज यानी इको कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी जिंदगी है। यह आपको हर चीज वापस लौटाती है। जो आप कहते हैं या करते हैं, आपकी जिंदगी हमारे कामों का ही प्रतिबिंब है। और अगर हम दुनिया में ज्यादा प्यार पाना चाहते हैं, अपने दिल में ज्यादा प्यार सभी से चाहते हैं, तो पहले अपने दिल में पैदा करें। हर वो व्यक्ति जो आपके आसपास है, जो आपसे जुड़ा है, हर वो प्राणी, हर वो परिंदा, प्रकृति, क्योंकि आप जो देंगे वही उससे पाएंगे। और ये जो संबंध है, जिंदगी के हर पहलू में, हर चीज में नजर आएगा। फिर देखिए, आपका नजरिया ही बदला बदला नजर आएगा।

0: जी हाँ, दूसरों के लिए जीने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का। ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। सखियों, आज है विश्व रक्तदाता दिवस और मेरे ठीक सामने बैठे हैं सेवा के मिसाल और युवाओं को प्रेरणा देने वाले रजत गौड़ जी। रजत जी लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपनी मानव सेवा, समर्पण, संवेदना से लाखों युवाओं को रक्तदान, शिक्षा और सेवा के लिए प्रेरित किया है। रजत जी, आकाशवाणी के नारी वाटिका कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम आपका।
0: तो रजत जी, आज है विश्व रक्तदाता दिवस, आप स्वयं रक्तदान करते हैं और क्या महत्व रखता है ये दिन आपके लिए?
1: वैसे रक्तदाताओं के लिए और रक्तदान पे काम करने के व्यक्ति के लिए मैं सोचूं तो आज हमारी एक दीपावली का जैसा एक त्यौहार है, जिस एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों को प्रेरित करते हैं। वैसे तो 12 मास ही रक्तदान में हमेशा प्रेरित करने का काम है, 24 घंटे x 7 हमारी सेवा रहती है। परंतु जैसे कि आज माने तो आज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आज रक्तदाताओं में एक विशेष ऊर्जा का संचार है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें और रक्तदान के प्रति लोगों को जोड़ें।
0: जी। अच्छा, ये आपने शुरुआत कैसे की? आपका जो एनजीओ है लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान, वो आरंभ कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई?
1: जी मैम, ये विषय मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण विषय है। शुरुआत आज से लगभग 11 साल पहले, मेरे एक मित्र था, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके भाई का। वो दिन एक ऐसा था कि दीपावली का सेम डे था, और ये जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, और मेरे साथ जुड़े जितनी संस्था में हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और वो उनसे सब जानते हैं। तो दीपावली के सेम डे था, शाम की टाइम थी, जो लोग अपने घरों के अंदर दीपक रोशन कर रहे थे, कोई फटाके फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तभी मेरे एक मित्र का कॉल आता है कि मेरे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड की आवश्यकता है। वो एक समय ऐसा था, हमने ब्लड की आवश्यकता है हमारे को इतना ठीक है, किताबों में पढ़ते थे ब्लड चढ़ाया जाता है, वो इतने तक ही सीमित थे, परंतु लाइव हमने कभी ब्लड देखा नहीं और चढ़ाते हुए भी नहीं देखा।
0: देखा नहीं।
1: तो वो एक बड़ा ही चिंताजनक विषय था, परंतु ईश्वर ने हमारी इतनी मदद की, उस रात में हमने हमारे मित्र के भाई को ब्लड डोनेशन करवा के उसकी ज़िंदगी बच गई। उस दिन से ये चैप्टर हमारी ज़िंदगी में एक अध्याय चालू हुआ, वो आज दिन तक बरकरार चलता आ रहा है।
0: नहीं, अब ऐसे तो कई घटनाएं होती हैं कि आप करते भी हैं, लेकिन एक संस्था बनाने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया?
1: हाँ, वैसे सोचे तो जब उन्होंने हमने उस व्यक्ति हमारे भाई को ब्लड दिलवाया, और जब डॉक्टर ने हमारे को एक शब्द बोला कि यदि इसको समय पर ब्लड नहीं मिलता तो हम ये सर्जरी नहीं कर पाते और क्या पता क्या होता, तो हम वैसे ही एक चाय की थड़ी पे 5-7 हमारे कॉलेज मित्र बैठे थे। मेरे एक मित्र रवि जी तिवाड़ी है, सोहन पटेल जी है, सुनील है, अमित है, हम 4-5 यंग युवा लड़के थे और चाय की थड़ी पे बैठते थे, दूसरी चीज़ों से। उस टाइम भी घर परिवारिक हमारे जो अनुशासन के गुण थे वो अच्छे थे, तो हम एक चाय ज़रूर पीते थे। तो उस चाय पे बैठे थे तो हमने ये सोचा कि उस रात को हमारे को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो अपन क्या करते हैं, कैंप करवाते हैं ब्लड डोनेशन। तो हमने सबसे पहले 11 साल पहले एक पाउटा सैटेलाइट अस्पताल था उस टाइम ही, उसमें एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया।
0: जी
1: ब्लड डोनेशन कैंप करवाया तो उस टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक का इतना वो प्रचलन नहीं था 12 साल
0: नहीं
1: पहले।
0: था।
1: तो हमने A4 साइज के पन्ने छपवाए, थम्बों पे, गलियों में, हमारे इर्द गिर्द जितनी हमारी पहचान थी हमने वो वितरण किए, और ऐसे जाके घर घर बोला भाई आपको ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन। तो काफ़ी घर वाले हमारे पीछे पड़े, कोई खून कोई निकाला जाता है क्या? तो भी हमने उस टाइम वो संघर्षी दौर था वो कैंप करवाया, और 57 यूनिट हमने ब्लड कलेक्शन किया। दूसरे दिन न्यूज़पेपरों में संचार के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने हमारा कहा अरे बहुत अच्छा काम कर दिया आपने तो बहुत। फिर लोगों की रिक्वायरमेंट आने लगी कि अरे उस दिन आपने कैंप करवाया ना, हमारे को ब्लड दिलो, कार्ड दो। तो फिर हमने सोचा कि हम कंटिन्यू, फिर वो एक ऐसी ललक लग गई, तो हमने इस संस्थान का नाम ही उस दिन से ब्लड पे ही रखा, लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान। व्यक्ति के शरीर के अंदर इस लाल बूंद से जीवन चल रहा है, तो उस संस्थान का नाम भी हमने लाल बूंद जिंदगी रख के उस संस्थान की शुरुआत की थी।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जैसे युवा समाज को जागृत कर रहे हैं और इतनी अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे भारत का भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है।
1: जी जी
0: अच्छा, ये आपने जो कही, आपने संस्था बना ली इस तरह से, तो कितने, क्या अब आगे इसकी इसकी प्रोग्रेस कैसी है, कितने शिविर लगा चुके हैं आप?
1: अब वैसे सोचें तो प्रोग्रेस तो हमने जब शुरुआत की थी उससे आज दिन तक 11 साल में हमने हमारी संस्थान ने काफ़ी कुछ कमाने का मतलब है, हजारों अनगिनत जिंदगियां बचाई हमारे रक्तदाताओं ने। आज संस्थान के अंदर जितने भी रक्तदाता जुड़े हैं, हजारों रक्तदाता जुड़े हैं, चाहे

0: मैं उनको जानता हूँ नहीं जानता हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु वो सब लोग संस्थान को जरूर जानते हैं। और यदि किसी हॉस्पिटल में अभी रात को 12 बजे कॉल आ जाए मथुरा दास माथुर अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति का, जान हो पहचान हो कोई मतलब नहीं है, परंतु हमारा जो रक्तदाता जाता है वो कम समय के अंदर ब्लड बैंक में जाके रक्तदान करके उसको खून अवेलेबल करवाएगा और चाय कॉफ़ी अपने पैसे की पिएगी। इस सोच के साथ हम बिल्कुल प्योरली सोशल सेवा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने
1: मतलब
0: कंटिन्यू,
1: वो जो आप चाय कॉफी उस समय तंदुरुस्ती के लिए जो दी जाती है वो भी आप अपने
0: हाँ
1: पैसों
0: वो भी
1: से।
0: हमारा डोनर कोई भी जाएगा वो अटेंडर से मरीज के परिवार वालों से कुछ पानी भी नहीं पिएगा, वो
1: नहीं
0: अपनी जेब
1: लेते।
0: के पैसे से चाय पानी पिएगा। और उसी क्षेत्र में संस्थान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई और हमारे पास आंकड़े ऐड होते रहे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हम रक्तदान करेंगे तो हमें मिथक है बहुत सारे कि हम कमजोर हो जाएंगे और ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप उस समय आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, आप उनको कैसे संभालते हैं, उनके उस जिज्ञासा को आप कैसे शांत करते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे को काफ़ी देखने को मिलता भी है। हमारा टारगेट रहता है फर्स्ट डोनर, जिस व्यक्ति ने प्रथम बार रक्तदान कर दिया वो सेकेंड बार ऑटोमेटिक आके करेगा। तो हम काफ़ी बार हमारे को देखने को मिलता है परिवार के लिए ब्लड चाहिए, फैमिली में ब्लड चाहिए, वो फैमिली का बंदा भी मना कर देता कि मैं तो नहीं दूंगा, मेरी कमजोरी आ जाएगी, मैं ब्लड दूं तो मेरी कमजोरी आ जाएगी। तो वो कभी काफ़ी बार शिक्षा का अभाव रहता है या उनको नॉलेज नहीं रहता है, तो हम उसको अच्छे से मोटिवेट करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य प्रेजेंट टाइम यही चल रहा है कि रक्तदाताओं को मोटिवेट करके रक्तदान करवाना। जिस व्यक्ति ने एक बार रक्तदान कर दिया, सेकंड बार वो किसी भी परिचित के अपरिचित के सुन लेगा, वो ब्लड डोनेशन करके आएगा। तो हम ये कहते हैं कि यदि एक उदाहरण दे कि समुद्र होता है, समुद्र में यदि एक लोटा पानी का भर लिया जाए तो समुद्र के कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
1: नहीं पड़ता।
0: वैसे ही नेचुरल बॉडी के अंदर यदि जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, तो वो व्यक्ति यदि 1 यूनिट ब्लड देता है तो उसके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति ब्लड देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ही दिनों के भीतर उसका ब्लड वापस नया बन जाएगा। और उसके मैं हमारी एक कहना है कि ब्लड देने वाले को ज्यादा फायदा है।
1: देने वाले को ज्यादा फायदा है। तो ये मिथक जो है उनको आप हटाते हैं, समझाते हैं। तो वास्तव में कौन इसके लिए है, किसे दे, कौन दे सकता है, स्वस्थ होने का आपके परिभाषा क्या है?
0: यदि अपन मेडिकली परिभाषा देखें चिकित्सा पद्धति से, तो एक 18 साल से लगाकर एक 60 साल वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है।
1: जी।
0: उसके बाद में जिस व्यक्ति को कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं हो, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो, किसी को कोई टैबलेट नहीं चलती हो, और जिसका वजन 60 किलो से ऊपर हो, 50 किलो से ऊपर भी हो, तो वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है। अब उसमें यही है कि ज़्यादा कोई नशा करने वाला या इस टाइप से कोई बड़ी लंबी बीमारी है उसका हम ब्लड नहीं लेते हैं। बाकी 18
1: तो
0: साल
1: वो आप
0: से
1: पहले चेक करते
0: वो
1: हैं।
0: हमारा एक फॉर्म भरते हैं ब्लड बैंक में, तो डॉक्टर फॉर्म भरता है, उस टाइम एक काउंसलर भी रहता है साथ में, और हम भी पहले उसकी काउंसलिंग कर लेते हैं कि भाई आप कोई गोली लेते हो या नहीं लेते हो, आपकी कोई पुरानी बीमारी है या बीमारी का, आपका कोई ऑपरेट हो रखा है या नहीं, आप कोई नशा करते हो या नहीं करते हो, इस टाइप से ये सभी पैरामीटर यदि किसी के अंदर कोई कमी नहीं है वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है। और
1: दे
0: युवा
1: सकते।
0: में तो मैं नहीं सोचता कि युवा ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रस्त होगा, युवा बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकता, बस युवा आज के समय में थोड़ा मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि युवा यदि ब्लड नहीं दे सकते हैं तो नशे की वजह से यदि थोड़ा कमी आ सकती है, बाकी युवा स्वस्थ व्यक्ति होता है, अच्छा खान पान है, और मारवाड़ में तो विशेष तौर से घर का खान पान है, तो हर एक स्वस्थ व्यक्ति आराम से ब्लड दे सकता है।
1: अच्छा, और स्त्री पुरुष में क्या भेद है?
0: हाँ, स्त्री पुरुष में यदि सोचे तो पहले महिलाओं का ब्लड डोनेशन थोड़ी मात्रा कम थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में देखें तो महिला बराबर रक्तदान कर रही है, महिलाओं का पैराग्राफ रक्तदान में बराबर है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिखने को मिलता था, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी यदि अपन सोचें कि नहीं ग्रामीण के अंदर सोच नहीं है या उनके अंदर शिक्षा नहीं है, परंतु तो मैं ये सोच रहा हूँ ग्रामीणों में भी हम ग्रामीण क्षेत्र में कैंप करते हैं, गाँव की महिलाएं बढ़िया तैयार होकर आती है, सज धज के आती है और वो ब्लड डोनेशन करती है। तो महिलाओं में ये सोचें क्योंकि उनके थोड़ा वो मानसिक चक्र का महावारी का रहता है, तो उस दरमियान हम ब्लड नहीं लेते हैं, और महिला का ब्लड लेने से पहले हम हीमोग्लोबिन जरूर चेक करते हैं,
1: चेक
0: जिस
1: करते।
0: महिला का हीमोग्लोबिन 12 या 13 से ऊपर है हीमोग्लोबिन, तो हम उसका ब्लड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
1: हमारे इस प्रोग्राम में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है,
0: जी
1: तो कोई आपको पसंदीदा गीत सुनाए?
0: हाँ, मेरे पसंदीदा गीत एक फिल्म है दूर का राही,
1: हाँ,
0: जीवन से ना हार बंदे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जीवन सेना हार तू मतवाले। रक्तवीर रजत जी बिल्कुल भी नहीं हारते और इसीलिए इतना महान कार्य कर रहे हैं, है ना रजत जी?
6: जी मैम जी।
5: बता दूं सखियों कि लाल बुंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष रजत जी से हम बात कर रहे हैं और अब अगला प्रश्न मैं इनसे पूछती हूँ।

0: रजत जी से हम बात कर रहे हैं। और अब अगला प्रश्न मैं इनसे पूछती हूँ कि आप जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, है ना,
1: जी।
0: उनके लिए आपकी संस्था लगातार काम कर रही है, तो वो किस तरह से उन्हें सहायता दे रही है?
1: जी मैम, यदि थैलेसीमिया शब्द आता है तो थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं जोधपुर का देखें तो लगभग जोधपुर में 400 से 500 बच्चे होंगे, और अपनी उम्मीद अस्पताल, गांधी अस्पताल, एक और ब्लड बैंक है, ये मिलके इन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं।
0: जी
1: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को, एक बच्चे को महीने में 3 यूनिट ब्लड लगता है कम से कम, हर 10 दिन में। माने तो जैसे कोविड बीमारी आई थी तो कोविड में पूरा भारत है वो घरों के अंदर पैक हो गया था,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पत्ता भी इधर से इधर नहीं हिलता था, परंतु उस दौरान भी ब्लड की खपत वो की वो थी,
0: हाँ, क्योंकि वो बच्चे थे।
1: तो उन बच्चों को तो ब्लड अवेलेबल करवाना ही था। तो हमारे इतने इस 11-12 साल की जर्नी में सबसे विकट समय वो था कोविड का, हमारे को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड अवेलेबल करवाना जरूरी था। तो हमारी टीम उस टाइम रात दिन लगी हुई थी, जब लोग यदि किसी की कॉनी किसी टेबल के टच हो जाती तो भी उसके दिमाग में ये भ्रम था कहीं
0: कि
1: मेरे
0: मैं
1: को
0: पॉजिटिव ना हो।
1: कोविड नहीं हो जाए। उस दरमियान लोग ब्लड बैंकों में आकर, अपने घरों के पास पार्क में मेडिकल टीम बुलाकर, ब्लड बैंक टीम बुलाकर ब्लड प्रोवाइड करवाते थे और ब्लड डोनेशन से उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज करवाते थे। परंतु इसके साथ मैं आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से आम जनता में और आज के युवाओं में एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे एक अभियान साथ में चलता है कि शादी की कुंडली मिलान के साथ साथ रक्त की कुंडली की मिलान भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: उसका
0: सही।
1: कारण है कि यदि थैलेसीमिया पीड़ित बाद जो जीन होती है उसकी एक टेस्ट होता है, हमारे एम्स में फ्री टेस्ट होता है, तो युवाओं को वो टेस्ट करवाना चाहिए
0: उसके
1: कि अपने
0: बाद
1: से उत्पन्न संतान थैलेसीमिया पीड़ित नहीं हो।
0: नहीं हो।
1: इसका बचाव सबसे ज़्यादा करेंगे, जागरूक रहेंगे, यदि अपनी ब्लड की जाँच करवाएंगे तो निश्चित ही थैलेसीमिया पीड़ित उत्पन्न बच्चे कम पैदा होंगे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने। अच्छा, डेंगू जैसी बीमारी, उसमें भी प्लेटलेट्स घट जाते हैं,
1: जी
0: तो इसमें भी आपका जो ब्लड ब्लड बैंक है वो काम आता है।
1: बिल्कुल, प्लेटलेट्स की बात करें मैम, प्लेटलेट्स ब्लड से थोड़ा अलग प्रोसेस हो गया। एक व्यक्ति का ब्लड यदि डोनेशन करवाएं तो 4 से 5 मिनट लगता है, प्रोसेसिंग सहित गिने तो 10 मिनट में व्यक्ति फ्री हो सकता है ब्लड डोनेशन करके। प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि धड़ाधड़ व्यक्तियों की ब्लड डोनरों की जरूरत होती है। मतलब प्रेजेंट टाइम ब्लड तो हमारे पास स्टॉक पड़ा है ब्लड बैंकों में,
0: जी
1: आज की तारीख में यदि जोधपुर का देखें तो हम सब ब्लड बैंकों के पास, हमारे पास 1000-1200 यूनिट ब्लड पड़ा है, तो इमरजेंसी में ब्लड चाहिएगा और ब्लड हम दे देंगे। प्लेटलेट्स डेंगू के अंदर एक सीजन चलती है तो उसके व्यक्ति को 2 से 3 यूनिट प्लेटलेट्स चली जाती है, क्योंकि उसकी प्लेटलेट्स 20,000 से यदि डाउन आने लगेगी, 10,000 से डाउन आने लगेगी, तो
0: जी
1: वो व्यक्ति खतरे के अंदर चला जाएगा, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसकी
0: बिल्कुल।
1: जान पे आ जाएगी। हमारे संस्थान का, हम ब्लड डोनेशन करते थे उसके साथ, जैसे ही हमारे पास ये परिस्थिति आई डेंगू की तो हमने एक टीम बना दी डेंगू की स्पेशल।
0: जी
1: हमारे जो डेंगू सीजन के अंदर जो प्लेटलेट्स डोनर है उनसे, उनके साथ हम स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करवाते हैं, उन
0: अच्छा
1: व्यक्तियों को 300 से 400 डोनर को हम अलग रखते हैं, जैसे ही एचडीपी की रिक्वायरमेंट आई वो जाते हैं। कारण है कि एचडीपी देने वाला बंदा पूरा परिपक्व होना चाहिए, उसकी हाथ की दोनों नसें चेक की जाती है और वो 1 घंटे का प्रोसेस होता है, पहले उस व्यक्ति की खुद की पूरी बॉडी की टेस्ट, क्योंकि वो लाइव जैसे ही निकाला और लाइव उस अगले
0: चढ़ाना है।
1: चढ़ाना, तो 1 घंटे तक मशीन के ऊपर सोया हुआ रहता है उसका। मतलब वैसे अपन मारवाड़ी भाषा में सोचें तो जैसे बिलावना करते हैं और मक्खन को अलग अलग करते हैं, वैसे ही एक ब्लड का वो है
0: उसमें से
1: प्रोसेस,
0: वो निकलते
1: तो वो
0: जाते हैं।
1: प्लेटलेट सेल्स निकलती रहती है। तो 1 घंटे का प्रोसेस है, ब्लड निकलेगा, मशीन में जाएगा, प्लेटलेट्स अलग होगी और वापस ब्लड चढ़ेगा। तो वो व्यक्ति, आज तो बहुत जागरूकता आ गई, बाकी पहले तो वो प्रोसेस देख के ही काफ़ी लोग,
0: घबरा जाते थे।
1: परंतु आज के समय में इसका बहुत अच्छा नवाचार है। कारण है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लेटलेट्स की आवश्यकता 20,000 होती है बॉडी के लिए, और अभी आप हमारा टेस्ट करवाएंगे तो लगभग 2 से 2.5 लाख सेल्स रहेगी, बाकी की सेल्स जन्मती रहती है मरती रहती है, बाकी की हम सो कहते हैं कि भाई ये गिफ्टेबल है, आप डोनेशन करो। तो काफ़ी बार तो हमारे डोनर ऐसे हैं कि 72 घंटे के अंदर रिटर्न डोनेशन कर देते हैं,
0: वापस आ जाते हैं।
1: क्योंकि वो बन जाती है, 50 घंटे में प्लेटलेट्स वापस डेवलप हो जाते हैं।
0: अच्छा, अभी रोकूंगी मैं आपको। जो जो ये काम करते हैं, जो युवा बच्चे आपके
1: जी
0: साथ, उन्हें कुछ और फायदा होता है?
1: अब वैसे सोचें तो पर्सनली उनको फायदा मानव धर्म के नाते तो काफी कुछ मिलता है।
0: नहीं, सपोज उनके परिवार में कहीं कोई दुर्घटना हुई और उन्हें जरूरत पड़ी।
1: जी बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता रहती है, वैसे तो हमारी प्राथमिकता हर उस व्यक्ति के साथ है, परंतु वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ व्यक्ति है,

0: जो हमारा ब्लड डोनेशन करता है उस व्यक्ति के लिए हम उसके पारिवारिक हेल्थ इशू हो चाहे उसके परिवार में ब्लड चाहिए होता है तो उसके लिए हमेशा रात और दिन तैयार रहते हैं। कारण है कि वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दिया है। और मैं सोचूं आज किसी व्यक्ति को मैंने ब्लड डोनेशन करवाएगा और परसों उसके परिवार में जरूरत पड़ गई तो निश्चित हम उसके लिए आगे आकर तैयार रहेंगे। उसके घर में देने वाला नहीं है तो हमारा दूसरा डोनर तैयार रहेगा,
1: परिवार की तरह
0: परिवार बन जाता है। बिल्कुल।
1: अच्छा, आपका कोई ऐप भी है और ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है, आपने मुझे अभी बातचीत करते हुए बताया था।
0: जी, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से ऐप भी है और वैसे तो ज़्यादा तो मेरे खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर चलते हैं। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप करता है, काफ़ी गांव से लोग आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, उनको नंबर ही याद रहते हैं, वो ऐप वो मैं ध्यान नहीं दे सकते या वो इंस्टॉल नहीं कर सकते तो उनके लिए मेरी मोबाइल नंबर की व्यवस्था भी बनाई रखिएगा। आप तो कॉल कर दो, ब्लड बैंकों में भी हमारे नंबर है, उस मोबाइल पर कॉल कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो भी उसकी व्यवस्था हम प्रायोरिटी से करवाते
1: रखते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है
0: जी,
1: ये किस तरह से काम करता है और ये कैसे पहुंच जाता है जिसको जरूरत होती है?
0: हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी डोनर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बी पॉजिटिव का अलग बनाया हुआ है, ए बी पॉजिटिव का अलग बनाया हुआ, अलग अलग ग्रुप वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं।
1: मतलब आपके पास यदि कोई फोन आया
0: जी
1: तो आप वो पूछेंगे उसका ग्रुप का नाम और उसको फॉरवर्ड कर दें।
0: जैसे कि मेरे पास आया ब्लड बैंक के गांधी अस्पताल में ए पॉजिटिव चाहिए फ्रेश ब्लड या एचडीपी, तो मैं वो रिक्वायरमेंट लेटर है उस ग्रुप के अंदर डाला, उस ग्रुप के अंदर से ए पॉजिटिव वाला बंदा हाथ खड़ा कर दिया और वो तुरंत ब्लड बैंक पहुंच
1: मतलब
0: जाता है।
1: आपका पूरा नेटवर्क है।
0: जी जी जी
1: अच्छा, कोई व्यक्ति आपके ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो
0: जी, जो हमारे
1: पहले आप उसके कोई कोई टेस्ट वगैरह कराएंगे कैसे क्या?
0: हम वैसे हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है रक्तदान। हम रक्तदान करवाते हैं तो पूरे बॉडी के पैरामीटर टेस्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नहीं करने के सामर्थ्य है, यदि नहीं भी कर सकता है, काफ़ी लोग ऐसे भी हमारे साथ के भी हम सेवा देना चाहते हैं तो कैंपों में सेवा देते हैं, कोई फ्रूटी पिलाता है, कोई डोनर के फॉर्म भरवाता है, कोई उसका काउंसलिंग करता है, इस टाइप से अलग अलग सेवाएँ हैं, वो काफ़ी लोग वॉलेंटरी भी काम करते हैं।
1: अच्छा, आपकी जो ये संस्था है वो और रक्तदान के अलावा
0: जी
1: और भी कुछ सामाजिक क्षेत्रों में काम करती है?
0: हम रक्तदान के अलावा रक्तदान करते हैं और रक्तदान के साथ साथ हम गवर्नमेंट स्कूल में जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनकी हम एक काउंसलिंग करते हैं, उन्हें उनके एनीमिया की जांच करवाते हैं, उनकी सीबीसी करवाते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं कि बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन कम नहीं हो, वो एनेमिक नहीं हो या ऐसी कोई डिजीज नहीं हो, पहले ही पता चल जाए तो समय पर उसका इलाज हो जाए। ये एक हमारा बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है। फिर हम प्रत्येक साल गवर्नमेंट में पढ़ने वाली, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चाहे कुछ भी हो, एक उनको पारितोषिक के रूप में हम प्रत्येक साल 51 बालिकाओं को छात्रवृत्ति देते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: उसके साथ ही जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम का विषय देखें तो पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान के अंदर मारवाड़ के अंदर बारिश नहीं हुई थी, गर्मी बहुत तेज थी, तो गाँव गाँव में हमारे 11,000 टैंकर का मिशन था, तो हमारे युवा जितने भी जुड़े हुए हैं वो उसके अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं। गांव गांव, किसी गांव के अंदर कोई खेली बनी हुई है, किसी गांव के अंदर कोई पोखर बना हुआ है, कोई तालाब बना हुआ है, वहां टैंकर कुटवाना, वहां से फोटो शेयर कर देनी, लोकेशन शेयर कर देना, इस टाइप से एक जल मिशन भी हम कंटिन्यू चलाते
1: रहे हैं। बहुत सुंदर। आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब हमारी समय सीमा है।
0: जी जी जी,
1: तो कोई संदेश जो आप देना चाहेंगे?
0: मैं आज आकाशवाणी के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे भारत के भविष्य, जो भी युवा है, क्योंकि युवा है वो एक विकसित देश का विकास करता है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ले लो, चाहे मुख्यमंत्री जी ले लो, चाहे हमारे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति को ले लो, हमारे सेना के जवान को ले लो, वो हमेशा युवा को टारगेट करते हैं। और युवा यदि समाज का सही दिशा में चलेगा तो वो समाज, वो भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं युवाओं से यही आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कहना चाहूँगा, यदि आप स्वस्थ हो और सही हो शारीरिक रूप से
1: जी,
0: तो आप रक्तदान जरूर करें,
1: जरूर करें।
0: और रक्तदान नहीं कर सकते हो तो आप किसी की मदद जरूर करें। मैं यदि समझे तो आध्यात्मिक में एक मानव जीवन है वो सबसे बड़ा जीवन है, यदि उसके अंदर कुछ कर जाए तो मैं सोचता हूँ वो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
1: धन्यवाद रजत जी, बहुत अच्छे सुलझे हुए आप हैं और वैसे ही आपके ऊंचे विचार, इसीलिए आप इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने समय दिया आज के दिन, विशेषकर आज के दिन
0: जी,
1: आप आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी वाटिका और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी हंसा विश्नोई। तो आज का जो दिन है, आज से शुरू होती है राजस्व संक्रांति उड़ीसा में। लगातार 3 दिन तक ये त्यौहार चलता है, बड़ा प्यारा त्यौहार होता है, बहुत लोकप्रिय है, नारी शक्ति को समर्पित प्रोग्राम होता है ये। इस उत्सव में जो इसके जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम में अब आप सोचिए कि मानसून आने वाला है और ये जो धरती है वो धरती बारिश के लिए बैठी है, प्यास बुझाने के लिए वो तैयार है। और ठीक ऐसे उत्सव पर ही बहुत सुंदर सुंदर ऐसे ही लोकगीत चलते हैं जैसा भी आपने सुना। ऐसी मान्यता है कि जैसे महिलाओं को मासिक धर्म होता है और उसकी जो उसकी प्रजनन क्षमता का प्रतीक है, ठीक ऐसे ही 3 दिन तक धरती माँ के मासिक धर्म के ये दिन माने जाते हैं। तो धरती को पूरा विश्राम दिया जाता है, सारे जो कृषि कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। इस दौरान धरती को न खोदा जाता है, न वहाँ से कुछ काटा जाता है, न उसको तोड़ा जाता है, पूरी तरह से धरती को विश्राम दिया जाता है। और अब क्योंकि आने वाला जो समय रहता है, उस समय में जो गाँव के युवा लोग हैं उन्हें अब खेती किसानी करना है, तो पूरा वो तैयारी तो कर ही चुके हैं, अब उन्हें उस बारिश का इंतज़ार है और कीचड़ दलदल लगातार बारिश से जो उनको सराबोर कर देगा, ऐसी हालत के लिए वो तैयार होते हैं, आराम करते हैं। पूरी कृषि संबंधी जितनी भी गतिविधियां रहती है वो सब ठप रहती है और इस आनंदमय वातावरण में गांव के जो युवक हैं वो आराम से नृत्य करते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। मतलब जितना भी हमारी संस्कृति में जो चला आ रहा है पारंपरिक खेल हैं वो सब इस दौरान ही खेले जाते हैं, खूब नाचा जाता है, जश्न मनाया जाता है।
6: लागा गोरी गुजरिया से

खांसी लगी है तो करज वामा खटक होई बे करी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक होई बे करी थई ता थई ता थई थई थई झाक दिनक दिन ठाक तिनक तिन ठाक दिनक दिन ठाक तिनक तिन ठा आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

साथियों, मंटो ने लिखा था एक बार के आसिफ के लिए कि कुछ खास तो नहीं किया, पर खुद पर भरोसा था कि सामने वाला इंसान भी घबरा जाए। तो ऐसे आत्मविश्वास से भरे के आसिफ, करीमुद्दीन आसिफ का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। इटावा में आज ही के दिन 1922 में इनका जन्म हुआ था। पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे के आसिफ। इनकी बनी 1960 में जो मुगले आजम फिल्म थी उसके लिए ये जाने जाते हैं, और ये जो फिल्म थी वो भारतीय सिनेमा इतिहास की बड़ी भव्य फिल्म थी, सबसे बड़ी फिल्म, सफल फिल्म। इसके लिए के आसिफ ने लगभग 15 वर्ष तक संघर्ष किया। इसकी शूटिंग उन्होंने 1940 में शुरू की थी, और जब ये रिलीज हुई तो उस समय 1960 था। अब आप सोचिए, 40 15 40, क्या ये मैं कहूँ कि ये इसको लगभग 20 वर्ष के करीब इन्होंने, इनके दिमाग में ये फिल्म चलती रही होगी। काम तो इन्होंने किया ही। अब देखिए, ये दौर था, उस समय पाकिस्तान बना था, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, और कितने ही इनने जो तय कर रखे थे, जो कलाकार तय कर रखे थे, वो कई कलाकार तो चले गए पाकिस्तान में और कई नहीं रहे इस दुनिया में। इस फिल्म की बात करें तो इसकी जो भव्यता थी उसके किस्से आज भी सुने जाते हैं। जैसे इसमें जिन जूतों का इस्तेमाल था वो आगरा से मंगाए गए थे, और जो आभूषण थे वो शुद्ध थे, नकली नहीं थे, और वो हैदराबाद से बनवाए गए थे। यहाँ तक कि ढाल तलवार वो भी हमारे राजस्थान से ली गई थी, और जो कपड़ों पर जरदोजी का काम था वो भी सूरत से बनवाया गया था। तो सोचिए, सब कुछ असल, सब कुछ। और यहाँ तक कि उस समय जो बड़े गुलाम अली खां थे, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी फिल्मों में गाते नहीं थे, लेकिन के आसिफ जो थे वो उनके पीछे पड़े रहे। आसिफ साहब ने हार नहीं मानी और अंततः उनको 25,000 की पेशगी दी गई। अब आप

तो ये थे बड़े गुलाम अली खान, जो फिल्मों में गाते नहीं थे, लेकिन इस फिल्म में वो उन्होंने गाना मंजूर कर लिया, और बड़ा अलग हटके एक बड़ी प्यारी सी गहरी आवाज़। तो आसिफ साहब जो थे, वो बता दूं सखियों कि जब भी आपके पास कोई काबिलियत होती है तो उसके लिए शिक्षा की डिग्री कोई काम नहीं करती। महज 8वीं जमात तक पढ़े हुए थे आसिफ साहब, और उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई। तो ये सारा काम होता है आत्मविश्वास से, और जब हम अपने आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को साधते हैं तो फिर हम उसमें सफल तो होते ही हैं। ये जो फिल्म थी मुगले आजम, वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में बनी थी, और उस जमाने में आप सोचिए इतनी कीमत। और ये भारतीय सिनेमा इतिहास में कई मामलों में मील का पत्थर साबित हुई हर तरह से। अब आप इसका संगीत सुनिए, या आप इसका चित्रांकन देखिए, या आप इसकी अदायगी देखिए, या आप इसके वाक्य देखिए, आप इसके सेंटेंस देखिए, जिसमें ये बड़े खूबसूरती से हर एक कलाकार, और वो कलाकार आज भी वैसे ही अपने उन संवादों के जरिए याद किए जाते हैं। संगीत के लिए कहा जाता है कि ये नौशाद साहब के पास गए, और उस समय नौशाद साहब से इन्होंने कहा कि देखो, मुझे बहुत उम्दा संगीत चाहिए, और ये मैं तुम्हें तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। और ये अपने साथ एक नोटों का ब्रीफकेस लेकर गए थे, लेकिन नौशाद साहब ने हंसते हुए उसे नकार दिया और कहा कि हुजूर, ये जो म्यूज़िक है उसकी क्वालिटी पैसों से कभी नहीं आती। सच कहा उन्होंने। अच्छा, एक रोचक बात और, इसमें पहली बार सेना के घोड़े और सेना के हाथी, सेना के जवान, उनका इस्तेमाल किया गया, और इसके लिए उन्होंने आसिफ साहब ने रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, जो उस समय थे, उनसे अनुमति ली थी। तो आप सोचिए, हर काम

हर काम अनूठा। और अब जो हम आपको गाना सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये गाना उन्होंने बाथरूम में गवाया था इको के लिए, ध्वनि के लिए, और वो संतुष्ट नहीं हुए थे जब ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया जा रहा था, तो आसिफ साहब इससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने इस गाने को एक बाथरूम में ले जाकर लता जी से ये गवाया था। तो सुनते हैं ये गाना।

समय से तो डरना पड़ता है, और समय के बहाव में हम इस मुकाम तक आ गए कि अब आपसे विदा लेने का भी समय हो गया है। तो कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ थे फारूक अहमद शेख, एचपीटी ट्रांसमीटर से विक्रम सिंह भाटी, राय सिंह राव, और हमारे इस प्रोग्राम की का संयोजन और परिकल्पना की थी मनीष सोलंकी जी ने। और कंसोल से आपको इतने मधुर जो गीत सुनवा रही थी वो थी पद्मनी बोहरा जी, और मैं आपकी सखी हंसा विश्नोई। तो अब अनुमति दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे इसी भाव के साथ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एनसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन

0: कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। ऐसे समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए दूसरी सभा का आगाज करें युवा दोस्तों के अपने कार्यक्रम युवा वाणी के साथ।

क्या बात है दोस्तों, लगता है कि सूरज जो है वो हमें जलाने ही वाला है। और लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन हम भी जो है वो अपनी जिद पर अड़े हैं। यानी कि हमारा जो संडे है वो हम अच्छे से एंजॉय करने कहीं ना कहीं जो है वो निकल ही जाते हैं। और दोस्तों, शाम की जो कहते हैं ना कि इस ढलती शाम में जो है वो जुड़ चुका हूँ मैं आपका रेडियो बड़ी आपके साथ, यानी कि मैं विकास कार्यक्रम युवाणी लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है फोन इन। यानी कि जो भी श्रोता जो है वो हमसे बात करना चाहते हैं वो हमें कॉल लगा सकते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे तक जो है वो आप अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा भी दीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ जो आपके लिए जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू भी है, जो कि हम आपको आगे शो के आगे जो है वो चलकर सुनाएंगे ज़रूर। तो आइए दोस्तों, इस शाम को शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में। तो सबसे पहले तो आज के दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसको मैं बता दूं कि आज के दिन जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की जो है वो शुरुआत की गई थी। 14 जून को जो है इस दिन को मनाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो इस दिन का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि इस दिन की जो शुरुआत है वो WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में की थी। वहीं 2005 में जो है वो इसे एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में जो है वो घोषित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसके पीछे की जो प्रिंसिपल है वो ये है कि 14 जून की तारीख चुनने का मेन रीज़न यही था कि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक काल लैंड स्टाइनर का जन्मदिन भी है, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो है वो खोज की थी। तो श्रोताओं, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या आपने कभी ब्लड डोनेशन किया है? अगर हाँ तो आपका अनुभव कैसा रहा है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अनुसार जो है वो ब्लड डोनेशन करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या होनी चाहिए? साथ ही साथ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यूथ है, उनमें ये भी मिथ है कि ब्लड डोनेशन करने से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या जो उनके फियर है मन में, तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का सवाल आपने सुन ही लिया होगा, तो जल्दी से जो है वो आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें मिलाइए। हमारे नंबर है 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जैसा कि श्रोताओं, अभी मैंने बताया था कि आज जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, और आज के इस स्पेशल दिन पर जो है वो आप सभी के लिए एक बहुत ही खास इंटरव्यू है जो कि आपको सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं आरजे स्वास्थ्य की बातचीत जितेंद्र बांता जी से, जो कि है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रक्तकोष फाउंडेशन जोधपुर के। आइए सुनते हैं ये वार्ता।

0: नमस्कार श्रोताओं,
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त आरजी स्वस्ति। हर साल हम 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं ताकि उन लोगों को सम्मान दे सके जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं और दूसरों के जीवन बचाने में सहयोग करते हैं। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहा जाता है कि किसी की मदद करने का सबसे सुंदर तरीका है उसे जीवन का उपहार देना। रक्तदान ऐसा ही एक अनमोल उपहार है जो किसी जरूरतमंद के लिए नई उम्मीद और नया जीवन लेकर आता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे रक्तदान के महत्व, उससे जुड़ी जागरूकता और समाज में इसकी आवश्यकता के बारे में। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र बांता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर क्या जुड़ाव कैसे होता है।
2: जी मैम, मेरा नाम जितेंद्र बांता है। मैं रक्तकोष फाउंडेशन से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और 2017-18 में मुझे रक्तकोष फाउंडेशन जोधपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया गया था और आज भी मैं रक्तकोष फाउंडेशन के साथ मिलकर रक्तदान में कार्य कर रहा हूँ। हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, रक्तदाताओं को जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

0: ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान हो।
1: ये क्यों मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस?
0: विश्व रक्तदाता दिवस मैम, रक्तदान की आज भी मतलब लोगों को महत्ता पता नहीं है, लोग रक्तदान करने से डरते हैं। एक मतलब दिन होता है जिसमें हम रक्तदान को सेलिब्रेट करते हैं।
1: और ऐसा लोग बोलते हैं कि रक्तदान सबसे महादान होता है, ऐसा क्यों?
0: हाँ, रक्तदान सबसे अमूल्य दान होता है, ठीक है ना। रक्तदान का कोई मूल्य नहीं होता है, जो अपने खुद के शरीर में बनता है, जिसको आज आप कितने भी पैसे दे के खरीद के नहीं ला सकते रक्त को। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाए। सबसे ज्यादा जो अमूल्य जो चीज है वो रक्तदान होता है।
1: और आज के समय में रक्तदान की क्या महत्वता है, कितना ज्यादा आवश्यक है ये?
0: रक्तदान बहुत जरूरी है। रक्तदान से आज अपन हजारों जिंदगी बचा सकते हैं। एक रक्तदान से किसी एक इंसान ने रक्तदान किया तो उससे 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है। इसमें रक्तदान में PRBC अलग होती है, प्लेटलेट्स अलग होते हैं, प्लाज्मा अलग होता है। तो 3 अलग अलग लोगों में ब्लड जाता है तो 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो रक्तदान की बहुत ज्यादा महत्ता है। लोग आज भी डरते हैं, बट रक्तदान ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए।
1: और जो हम जैसे युवा हैं, उन युवाओं को क्या गलतफहमी होती है रक्तदान को लेकर?
0: लोग डरते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, रक्तदान करने से हमें कोई बीमारी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रक्तदान करने से जो ऑलरेडी जो बीमारियां होती है तो वो बीमारियों से अपन मतलब दूर हो सकती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, आपका BP नहीं बढ़ेगा। आप समय पर रक्तदान करोगे तो वापस नई RBC बनेगी, तो आपको वापस मतलब नया ब्लड बनेगा, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी।
1: तो मतलब हम युवा जो सोचते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाएगा या जो घबराते हैं, उनको नहीं घबराना चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई वजन बढ़ता नहीं है, कोई वजन घटता नहीं है। आपका सिर्फ 300 ml ब्लड लिया जाता है, ठीक है ना। बॉडी में करीब 5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें से ओनली 300 ml ब्लड लिया जाता है। वो वापस 24 घंटे में, 48 घंटे में वापस रिकवर हो जाता है। तो इतना कोई घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, सबको आगे आके रक्तदान करना चाहिए।
1: और हमारे शरीर में से जो 1 यूनिट रक्त लिया जाता है, उससे कितने लोगों की मदद हो सकती है?
0: 1 यूनिट में 300 ml रक्तदान लेते हैं, जिससे 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है। जिसमें मैंने पहले बताया कि उसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और एक RBC, तीनों अलग अलग सेपरेटली होते हैं और तीनों अलग अलग लोगों के शरीर में जाता है, तो 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है।
1: और युवाओं की जो भूमिका है रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए, वो कैसे महत्वपूर्ण है?
0: युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं को आगे आके रक्तदान करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आजकल लोग युवा काफी लोग आगे भी आए हैं, बट आज भी लोग डरते हैं। महिलाएं डरती है, महिलाएं कहती है हमें कमजोरी आ जाएगी, वो आ जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता ऐसा। जबकि रक्तदान करने से आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो रक्तदान सबको करना चाहिए, और युवाओं को इसके लिए बहुत आगे से आगे आना चाहिए। अपने जन्मदिन, अपने एनिवर्सरी पे फालतू की पार्टी ना करके रक्तदान करना चाहिए, ताकि किसी जिंदगी की अपन जिंदगी बचा सकते हैं।
1: और जो लोग डरते हैं, अभी भी नहीं करते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, या वो सुई से जो अभी भी लोग डरते हैं,
0: जी
1: उनके लिए
0: जी
1: आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, बस एक वो मन में भ्रांति है कि मतलब रक्तदान करने से अपने ये हो जाएगा रक्तदान करने से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक बार रक्तदान करोगे तो सेकंड टाइम आप खुद ही रक्तदान करने चले जाओगे, क्योंकि रक्तदान बहुत इजी मतलब प्रोसेस होता है। एक सिर्फ 2 4 5 मिनट का प्रोसेस होता है। 4 5 मिनट में 300 ml ब्लड ले लेते हैं, और बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। नॉर्मल निडल होती है एक, मतलब पता ही नहीं चलता है कब ब्लड लिया। तो रक्तदान करना चाहिए सबको।
1: और रक्तदान को लेकर आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में क्या उम्मीद है हम सबकी?
0: रक्तदान से बहुत सारी उम्मीदें हैं। रक्तदान मतलब आज पहले पहले रक्तदान कम होता था, आज फिर भी बहुत सारी संस्थाएं आगे आई है और रक्तदान करवा रही है। आज हमारी संस्था जो रक्तकोष फाउंडेशन है, उसके द्वारा करीब हमने 1,75,000 यूनिट रक्तदान हम करवा चुके हैं। अभी 6 सालों में हमने 1,75,000 यूनिट हमने रक्तदान करवा दिया है। हमारी जो रक्तकोष फाउंडेशन है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाली संस्था है, ठीक है ना। तो और भी कई संस्थाएं आगे आई है, और संस्था आगे आने से रक्त की कमी अब थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि थैलेसीमिया जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारा रक्त जाता है, तो रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए, अपने बर्थडे एनिवर्सरी पर रक्तदान शिविर लगाना चाहिए, ताकि रक्त की कमी नहीं हो।
1: तो पहले जो लोग बोलते थे कि रक्तदान एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमें खून की कमी अभी भी होती है लोगों को, क्या अभी भी वो एक सबसे बड़ी चुनौती है?
0: चुनौती जैसा कुछ भी नहीं है, बस लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है। लोग है ना रक्तदान करने से आज भी डरते हैं, वरना आज इतनी बड़ी रक्त की कमी नहीं होती। आज अभी गर्मियों के सीजन में अभी सब ब्लड बैंक खाली पड़े हैं, आज भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अपने खुद के परिवारजन के लिए आज ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं। लोग हमें कॉल करते हैं कि साहब ब्लड, 1 यूनिट ब्लड दिलाओ। अब उनके घर वाले सब, हस्बैंड वाइफ सब बैठे हैं, बट वो रक्त नहीं देना चाहते हैं। वो हमें बोलते हैं कि सर 1 यूनिट रक्त करवाओ, 1 यूनिट अरेंज करवाओ। हम किसी डोनर को, वो भी एक रक्तदाता है, वो दिन रात नहीं देखता है, वो जाके डोनेट करता है, ठीक है ना। तो लोगों को आज भी मन में ये डर बैठा हुआ है। बस मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा

0: रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए, लोगों को जन जागरूकता अभियान करने चाहिए ताकि रक्त की कमी दूर हो सके।
1: और जिन लोगों ने अभी तक खून नहीं दिया एक बार भी, या जो पहली बार देने जा रहे हैं, आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे?
0: पहली बार सबसे पहला है कि डरना नहीं चाहिए रक्तदान करने से, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल एक अपने नॉर्मल अपने ब्लड सैंपल लेते हैं, उतना सा नॉर्मल एक प्रिक होता है और उसके बाद में कोई भी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल इजीली 2 या 3 मिनट का प्रोसेस होता है, 2-3 मिनट में रक्तदान आराम से कर सकते हैं। और जो पहले रक्तदान करेगा तो उसको सेकेंड थर्ड टाइम अपना आप ही उसको खुद को मन में इच्छा होगी कि मैं रक्तदान करूं, क्योंकि किसी की जिंदगी बचेगी तो जो अपन किसी की जिंदगी बचाते हैं तो मरीज के जो परिजनों के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, तो उससे अपना आप ही आगे रक्तदान करने की अपन को मतलब आती है कि अपन को आगे आके रक्तदान करना चाहिए।
1: मतलब रक्तदान केवल आपातकालीन परिस्थिति में काम आता है या उसके अलावा भी काम आता है?
0: आपातकालीन परिस्थिति में तो काम आता ही है, और रूटीन भी आज जैसे कोई फीमेल एडमिट है, सिजेरियन है, उसके कुछ भी दिक्कत है तो महिलाओं में बहुत ज्यादा आजकल मतलब रक्त की कमी होती है, तो रूटीन कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें भी रक्त की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। आपातकालीन में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए कहते हैं कि रक्तदान करके रखना चाहिए ताकि ब्लड बैंक को जितने अपन रक्तदान शिविर देंगे तो आपातकालीन में कोई मरीज आएगा तो उसकी जिंदगी बचा सके, क्योंकि आपातकालीन में एक्सीडेंट केस आ गया तो उसको 10-10 यूनिट 15-15 यूनिट रक्त मतलब चढ़ता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करेंगे तभी तो उन पेशेंट की जान बचा सकेंगे।
1: बिल्कुल, हमारा जो समाज, हमारा जो देश है ना, उसमें रक्तदान की क्या महत्व है, क्या जरूरत है वो भी?
0: रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत है, रक्तदान करने से आज अपन किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। आज अपने ये चीज अपने खुद के मतलब ऊपर अप्लाइड होगी तब पता चलेगा कि रक्त की क्या महत्ता है। अपने खुद का कोई परिवारजन बीमार होगा उसको रक्त की जरूरत होगी तब अपन इधर उधर करेंगे, तब अपन को ब्लड नहीं मिलेगा तब अपन को रक्तदान की महत्ता पता चलेगी, इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। अगर सब रक्तदान करेंगे तो अपने देश में रक्त की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। रक्त आज ब्लड बैंक जैसे खाली पड़े हैं वो ब्लड बैंक खाली नहीं दिखेंगे, उनमें पूरा प्रॉपर रक्त मिलेगा, तो आज पेशेंट की कोई भी इमरजेंसी केस हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो उसको इमरजेंसी रक्त मिल पाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जो रक्तदान करने वाले हैं उनको समाज में कैसे प्रेरित या सम्मानित किया जाता है?
0: रक्तदान जो करने वाले हैं उनको समय समय पे मतलब रक्तदान सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें उनको एक मतलब एक होता है कि उनको मतलब प्रेरित करें ताकि और भी आगे आके रक्तदान करें लोग, ठीक है ना। तो सम्मान समारोह आयोजित करते हैं तो उसमें रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाता है।
1: हम सभी को ना नियमित रक्तदान करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम रोज जाके नहीं देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लगते भी हैं पर हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं हम दे नहीं पाते हैं, तो
0: नहीं,
1: रोजमर्रा में क्यों जरूरी है?
0: रोज देना भी नहीं होता है रक्तदान। एक्चुअली अपने जो पुरुष है उसमें हर 3 महीने में रक्तदान मतलब ये माना गया है कि 90 दिन में रक्तदान करना चाहिए, हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए, और महिलाएं उनको हर 4 महीने में रक्तदान करना चाहिए। अगर प्रॉपर समय पर रक्तदान करेंगे तो रक्त की कमी अपने देश में रक्त की कमी नहीं होगी। प्रॉपर अपन हर 3 महीने में ये ठान ले कि अपन को रक्तदान करना है तो आगे जाके रक्त की कभी कमी महसूस नहीं होगी।
1: बिल्कुल, जैसे आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आपने क्या आयोजन किया है इस दिन को और अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए?
0: हमारे रक्तकोष फाउंडेशन द्वारा एक बहुत बड़ा जयपुर में अधिवेशन हो रहा है, जिसमें हम रक्तकोष फाउंड हमारी संस्था एक्चुअली राजस्थान के हर जिले में बनी हुई है, राजस्थान के करीब 33 जिलों में हमारी संस्था कार्यरत है। उसके अलावा हमारी संस्था मुंबई, अहमदाबाद और वहाँ पे भी संस्था कार्यरत है, तो जितनी भी संस्था के पदाधिकारी है उन सब वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, और हमारे डॉक्टर आदरणीय जितेंद्र कुमार सोनी है वो IAS है और इस संस्था के संस्थापक जी है, तो वो भी उस संस्था में अपना मतलब संस्था का बड़ा अधिवेशन है वो जयपुर में हम 14 जून को आयोजित कर रहे हैं, जो उसमें मीटअप होगा और रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस पे?
0: विश्व रक्तदान दिवस पे मेरा यही संदेश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे आके रक्तदान करना चाहिए। युवा अगर आगे आके सब ठान लेंगे रक्तदान करेंगे तो कभी भी रक्त की कमी महसूस नहीं होगी। आपका 1 यूनिट रक्त से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो, 3 की आप अगर नियमित रक्तदान करोगे तो कितने लोगों की जान बचा पाओगे। आज इमरजेंसी में रक्त की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब कोई नहीं होता है उसके साथ में, जैसे कोई अननोन पेशेंट आया इमरजेंसी में उसके साथ में देने वाला कोई नहीं है, अगर वहां पे ब्लड अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड बैंक स्टाफ उनके रक्त अवेलेबल करवा के उस पेशेंट की जान बचा पाएंगे। अगर रक्त नहीं होगा तो उस पेशेंट की जान कैसे बचाएगी।
1: बिल्कुल, ये बात तो है। और खून देने से पहले या बाद में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, रक्तदान कभी भी भूखे पेट नहीं करना चाहिए। अपन को कुछ ना कुछ लिक्विड और सॉफ्ट कुछ खा के फिर ही रक्तदान करना चाहिए। लोग कहते हैं कि मतलब कुछ खाया नहीं और रक्तदान कर दिया, तो उसके बाद में उसको पहली बात तो 24 घंटे पहले कोई भी ड्रिंक वगैरह नहीं करी हो। अगर ड्रिंक की हुई हो तो वो डॉक्टर को प्रॉपर बता दे कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, या कोई उसको बीमारी है पहले से, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन है, तो वो पहले से

0: को बताएं, छुपाएं नहीं, क्योंकि आपका रक्त से किसी की जान जा भी सकती है। आपने अगर आपके आपके हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है और आपने ब्लड दे दिया, तो वो किसी और के शरीर में जाएगा, तो उसको हो सकता है, उस पेशेंट के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आपको डॉक्टर को प्रॉपर बताना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी है और सर मैंने ये अल्कोहल ले रखा है, तो उसका प्रॉपर उसको गाइडेंस कर रहे, डॉक्टर सारा पूछता है उनको। वो कई बार छुपा देते हैं कि साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमने ड्रिंक नहीं कर रखी है, बट उन्होंने ड्रिंक की होती है। तो वो जो ब्लड में 24 घंटे में ब्लड शरीर में रहता है, तो वो उसके रेसेज उसमें भी जाते हैं, तो उस पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ खाके रक्तदान करें।
1: और उसके बाद कैसे ध्यान रखें, जैसे ब्लड दे दिया उसके बाद अपना कैसे?
0: ब्लड देने के बाद कुछ भी लिक्विड जूस वगैरह जरूर लेवे, बिल्कुल ऐसे नहीं रहे, चक्कर वक्कर आए तो साधारण सिंपल लेट जाए, आप बिल्कुल डरे नहीं रक्तदान करने से, और कुछ ना कुछ आप लिक्विड वगैरह जरूर लेवे रक्तदान करने के बाद में।
1: और कई कुछ लोग होते हैं शायद वो बीमार होते हैं, उनको जुकाम बुखार भी होता है लेकिन फिर भी वो खून देने आते हैं, तो क्या वो सही है?
0: नहीं, वो सही नहीं, इसीलिए मैंने ये बोला कि लाइन की उन किसी को फीवर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटिक, कोई भी तरह की बीमारी है जैसे थायराइड है, वो पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट जरूर करें। अगर किसी को फीवर है तो उसको, अगर वो एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसको 7 डेज तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर को बताएं कि सर मेरे को ये फीवर आ रहा है, मैं 3 दिन से मेरे को फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर अपना मना कर देंगे कि भाई आप नेक्स्ट शेड्यूल में कभी भी आप 7 डेज बाद में रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्त जितना मतलब किसी की जिंदगी बचा सकता है उतनी जिंदगी ले भी सकता है। तो आप प्रॉपर मतलब डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर जो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही से आंसर दे। हर कैंप में, हर ब्लड बैंक में एक डॉक्टर्स होता है जो आपको सवाल पूछते हैं कि आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपने ये, आपके कोई टेबलेट तो नहीं चल रही है, तो प्रॉपर डॉक्टर को बताएं ताकि आपका रक्त किसी की जिंदगी मतलब खराब नहीं करे बस।
1: बिल्कुल, ये बात तो बहुत सही कही आपने कि रक्तदान तो करना चाहिए सबको और खुद
0: जी
1: का ध्यान भी साथ में रखना चाहिए। और
0: बिल्कुल,
1: आखिर में आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं को यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको रक्तदान करना चाहिए, सबको आगे आके रक्तदान करना चाहिए। अपने एनिवर्सरी, अपने जन्मदिन पे आप कोई भी पार्टीज नहीं करके, आप कहीं घूम फिर के फालतू का खर्चा करके, इससे बढ़िया रक्तदान करो, तो किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगी तो आपका बर्थडे वैसे ही सक्सेस हो जाएगा। आपकी एनिवर्सरी आ रही है तो आप लोगों को, किसी कपल को रक्तदान दो, तो किसी की जरूरत, किसी के टाइम रक्त किया गया, उसके उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी, तो अपन अपना आप ही मतलब एक हैप्पी हो जाएंगे कि, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान।
1: बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो रक्तदान करना ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए थोड़ा सा समय और 1 यूनिट ब्लड किसी के चेहरे पे मुस्कान और जीवन में नई उम्मीद ला सकता है। इसी संदेश के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, हमारे कार्यक्रम युववाणी में जुड़े उसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद ना।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना बहुत ही शानदार इंटरव्यू, जहां पर बताया गया जितेंद्र जी के द्वारा कि किस तरीके से जो है वो किस आयु वर्ग के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्या क्या मिथ है उसके बारे में और क्या क्या फैक्ट्स है। तो श्रोताओ, अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो है वो हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन मिला सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 02912553300, और हमारा दूसरा नंबर है 02912554300। लगता है श्रोताओं, आज का जो हमारा पहला कॉल है वो आ चुका है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, शंकरलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी
0: जी, शंकर लाल जी, सबसे पहला तो आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में।
1: सर, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, प्लीज थोड़ा आप लिस्टर का ईयरफोन वॉल्यूम बढ़ाया करती। जी
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या अब आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़?
1: सर, आप सुन पा रहा हूँ।
0: जी, तो शंकरलाल जी, जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि आज के दिन जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या आपने कभी ब्लड डोनेट किया है?
1: सर, अभी मैं जितेंद्र जी की बातें सुन रहा था, उनका इंटरव्यू सुन रहा था सर, मुझे इतना अच्छा लगा वाकई में। ये भ्रांति तब होती है जब किसी ने ब्लड डोनेट नहीं किया हो। जब
0: जी
1: ब्लड
0: जी
1: डोनेट करने के बाद सारी भ्रांतियां मिट जाती है।
0: जी
1: सर, मुझे याद है 2010 में मेरे इधर शॉप के पास में एक कोई कैंप लगा था ब्लड डोनेट का।
0: जी
1: पहले तो
0: जी
1: मैंने मना किया, नहीं सर, वो तो कहते हैं ना क्या ना, कमजोरी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा। उन्होंने समझाया, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है,
0: जी
1: आप
0: जी
1: एक बार करके तो देखो। तो
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
1: मुझे लिटाया, उसके बाद फिर एक एक एक छोटा सा तराजू था, उसके ऊपर एक थैली रखी उन्होंने, और मतलब 2-3 मिनट हो गया। और मैंने बोला क्या हुआ, क्या हो गया,
0: जी,
1: मैंने कहा हो गया, हाँ बस आपका तो पूरा शरीर का थोड़ी खून लेना है, सिर्फ 300 ml ही लेना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शंकरलाल जी, 1 यूनिट के आपका ब्लड लेने से हम लोग 3 लोगों की जिंदगी बचाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा
1: उसके
0: आपने। तो
1: बाद जोधपुर के अस्पतालों में जो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे हैं जिनको रोज खून चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो उनको किसी न किसी रूप में ये खून जाता है।
0: जी
1: जिनको डायलिसिस होती है या लेडीज का जिनका सिजेरियन होता है, उनको
0: जी
1: ब्लड
0: जी
1: की आवश्यकता होती है।
0: जी जी
1: मुझे अपने आप पे गर्व हुआ और मैं धन्यवाद दिया, मैंने उस संस्थान को धन्यवाद दिया कि
0: जी जी
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। वो
0: तो
1: दिन है, और
0: शंकरलाल
1: आज
0: जी, आपने
1: मतलब
0: अपनी
1: साल
0: ज़िंदगी में
1: में
0: जो है
1: एक
0: वो
1: बार तो मैं जरूर ब्लड डोनेट करता हूँ, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है। मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि आपको ये भगवान ने ये अवसर दिया है कि आप 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की
0: जी
1: जान
0: जी
1: बचा सकते हो, इससे बड़ी
0: तो
1: मानव सेवा
0: मतलब
1: क्या हो
0: साल
1: सकती
0: में
1: है।
0: आप एक बार जो है वो ब्लड डोनेट ज़रूर करते हैं,
1: जी सर, जी
0: बहुत ही। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं शंकरलाल जी, तो उसके बाद में जो है वो आपको कितना गर्व महसूस होता है कि किस तरीके से जो है कि मेरे द्वारा दिया हुआ खून जो है वो किसी की जान भी बचा सकता है, किसी के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, तो वो फीलिंग आपने क्या महसूस करी?
1: सर, मैं मतलब जब मैं जब घर में आता हूँ तो मतलब
0: जी
1: ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अपने आप को तो बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत बड़ा एक तीर मार लिया है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: मतलब
1: मैंने
0: एक
1: बहुत बड़ा
0: पॉजिटिव
1: त्याग
0: एनर्जी आ
1: किया
0: जाती
1: है।
0: है।
1: बहुत बड़ी मैंने अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छी खुशी मिली है कि मैं ये चीज कर पाया हूँ।
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद मैंने तय किया है कि मुझे जितने भी मेरे जो भी दोस्त वगैरह मिलेंगे उनको मैं बोलूंगा, एक बार करके देखिए, अच्छा लगेगा।
0: तो शंकरलाल जी, बिल्कुल आपकी जो बात है इस पर तो तालियां बजनी चाहिए। तो शंकरलाल जी, जैसा कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो दूसरे भी जो श्रोता है जो आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी यूथ है या फिर जो भी अभी जितेंद्र जी ने हर आयु वर्ग को जो है वो मेंशन किया है, तो उस वर्ग आयु वर्ग के लोग जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो शंकरलाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
0: जी, तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस है जो कि किसी की जान बचा सकते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आइए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हेलो।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में।
0: जी सर, थोड़ा सा लाउडली बोलने का प्रयास करेंगे आप प्लीज़? आपसे
1: जी
0: रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ काफ़ी धीरे आ रही है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आ रही है आपको आवाज?
0: जी सर नमस्कार, मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ, दिनेश सोडा।
1: जी, दिनेश जी। तो जैसा कि आपने हमारा आज का सवाल सुना ही है कि किस तरीके से जो है
0: आपने
1: वो
0: पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, दिल से सैल्यूट करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है
1: बिल्कुल
0: और
1: धन्यवाद
0: प्रोग्राम की थीम बहुत अच्छी। आज ब्लड
1: जी
0: डोनर
1: जी
0: डे है ना, तो मैं सभी से ये आपके मार्फत इस रेडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज ब्लड डोनेट जरूर करें। और ब्लड डोनेट करने से कभी ब्लड कम नहीं होता है,
1: बिल्कुल
0: ब्लड
1: बिल्कुल
0: कभी लॉस नहीं होता, क्योंकि जो पानी अगर पड़ा रहता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं ना, वैसे
1: बिल्कुल
0: ही अगर
1: सही
0: ब्लड
1: कहा।
0: हमारे शरीर में पड़ा रहेगा
1: तो दिनेश
0: तो
1: जी,
0: काफी
1: आपकी
0: सारे
1: लाइफ में ऐसा
0: बैक्टीरिया।
1: कोई एक्सपीरियंस है ब्लड डोनेशन से
0: बिल्कुल
1: रिलेटेड?
0: वही तो बता रहा हूँ
1: जी
0: मैंने,
1: जी
0: फर्स्ट बार जब मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल गए थे तब एक बच्ची रो रही थी, छोटी सी बच्ची,
1: जी जी
0: समथिंग 14-15 साल की थी वो,
1: जी जी
0: और उसको थैलेसीमिया थे है ना, थैलेसीमिया की वजह से उसको बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी।
1: जी
0: तो उसको जरूरत थी कि अगर कोई ब्लड डोनर हो और मुझे डोनेट कर पाए ताकि मेरी जान बच पाए, है ना।
1: जी जी
0: उसके मम्मी वगैरह सब लोग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई लोग उनकी बात सुन नहीं रहता। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बात
1: बिल
0: 2012 की है,
1: जी जी
0: जब मैं और मेरी वाइफ वहाँ बैठे थे रिसेप्शन
1: जी
0: में,
1: जी
0: वेटिंग हॉल में,
1: तो मतलब आप बता
0: तो
1: रहे हैं
0: मैंने
1: कि
0: बात
1: कोई भी
0: की,
1: ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी नहीं था उस टाइम?
0: रेडी नहीं थे। तो फिर
1: जी
0: मेरे वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि एक
1: जी
0: बार
1: जी
0: ट्राई तो करके देखिए,
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: सही कहा
0: कौन सी आपकी
1: आपने।
0: जान जा रही है। आप अगर ब्लड डोनेट नहीं कर रहे तो एक बच्ची की जान जा रही है, और आप डोनेट कर रहे हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपकी जान नहीं जाएगी और इसकी जान बचेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिए
1: बिल्कुल
0: प्लीज,
1: सही कहा।
0: है ना। तो मैंने वो ब्लड डोनेट किया और आज उसकी वजह से मेरी वाइफ ने मोटिवेट किया, और उसकी वजह से आज जब भी वो बच्ची मिलती है
1: जी
0: एक
1: जी
0: ब्लड
1: बिल्कुल।
0: रिलेशन जैसा बन गया। आज भी वो याद करती है, जब भी मिलते हैं बड़े खुश होते हैं कि आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बचने का नहीं है, ऐसा
1: देखिए
0: कुछ नहीं है। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तो इसकी वजह से आज मैं 3 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ उसके बाद में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और
0: और
1: मैं
0: सभी
1: तो
0: से ये कहूंगा
1: आपकी
0: ब्लड डोनेट
1: जो
0: जरूर करें।
1: धर्मपत्नी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने आपको मोटिवेट किया है।
0: जी, और मेरा ओ पॉजिटिव है तो सबके काम आ सकता है, मैं ओ पॉजिटिव हूँ, तो जब भी मौका बनता है, जब भी
1: बिल्कुल
0: कुछ ना
1: दिनेश
0: कुछ
1: जी,
0: फंक्शन वगैरह ऐसे होते हैं तो मैं ब्लड डोनेट
1: बिल्कुल
0: जरूर
1: दिनेश जी,
0: करता
1: आपने ये सोचा कि किस तरीके से जो है वो मैं एक दूसरे की
0: हूँ।
1: जिंदगी जो है, एक दूसरी जिंदगी जो है वो अपने बिहाफ पर बचा सकता हूँ, तो इस बात के लिए जो है वो आपके लिए तालियां तो जरूर बजनी चाहिए।
0: जी सर थैंक यू।
1: तो दिनेश जी, आपने अपना बहुत ही शानदार जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगर आप भी जो है वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल मिला सकते हैं हमारे इस नंबर पर। तो लगता
0: हेलो
1: है कि नंबर मिलाने से पहले ही जो है हमारे पास
0: हेलो
1: कॉलर आ चुके हैं। हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते
1: जी, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में।
0: कार्यक्रम युवाणी में जी, स्वागत।
1: जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
0: नाम बताइए। मेरा नाम नत्थी राम, बाड़मेर जिले से।
1: जी, तो नत्थी राम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पीछे जो रेडियो बज रहा है उसका वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम कर दीजिए।
0: जी कर दिया सर।
1: जी नत्थी राम जी, तो आज का आपने जो है वो हमारा सवाल सुना ही होगा कि आपने जो है वो कभी ये एक्सपीरियंस लिया है ब्लड डोनेट करके? क्या
0: क्या सर?
1: आपने कभी ब्लड डोनेट किया है?
0: नहीं सर।
1: जी, तो क्या कभी आपके मन में कोई फियर रहा है या फिर कोई ऐसा भ्रम था जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाए?
0: ध्यान नहीं करता।
1: जी, मतलब आप बता रहे हैं कि आप इस बात से जो है वो अपरिचित थे।
0: जी सर।
1: जी, मतलब आप इस बात से अपरिचित थे। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आप इस चीज़ के लिए जो है वो आगे आना पसंद करेंगे?
0: हाँ जी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल नत्थीराम जी, के आप भी जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हमें कि कभी आपको मौका नहीं मिला, और हम आशा करते हैं कि आपको भी जो है वो आगे मौका मिले और इसी तरीके से जो है वो आप किसी दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो अपना रोल निभाए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

इसी के साथ चलते हैं श्रोताओं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी कारण से जो है वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो

0: ये करते हैं हमारे अगले कॉलर से बातचीत। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार
0: जी, नमस्कार।
1: जी। जालाराम जी बालोतरा से बोल रहे हैं।
0: जी, जालाराम जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या आपने अपनी
1: जी
0: लाइफ में जो है वो कभी ब्लड डोनेट किया है?
1: हमने तो नहीं किया है कभी। जी
0: जी, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि
1: जी इच्छा तो होती है, कभी करते हैं डोनेट। मेरी ना हम तो कभी किया ही नहीं, कहाँ वहां पे गए ही नहीं कभी।
0: जी, तो आपको किस चीज़ ने कभी रोका? क्या आपको लेके कोई इस बात को लेकर जो है वो कोई फियर है या फिर कोई भ्रम है मन में?
1: हाँ
0: जी, तो आशा करते हैं कि
1: जी
0: आप
1: है,
0: भी
1: जी
0: जो है
1: है,
0: वो आगे
1: लेकिन
0: ब्लड
1: है
0: डोनेट
1: कभी।
0: जरूर
1: आप तो
0: कीजिए।
1: खेती बाड़ी है, हम तो गाँव में रहते हैं, कभी वहां पे गए ही नहीं लैब पे।
0: जी, पर आजकल तो सुनने में आया है कि गांव-गांव तक भी जो है वो पहुंच चुकी है काफ़ी
1: हाँ
0: सारी
1: गांव गांव
0: संस्थाएं।
1: पे है,
0: जी
1: सुन
0: जी
1: रहे लेकिन सुनने भी आ रहे हैं, हम तो कभी गए नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, तो आपका हमारे
1: हो
0: साथ जुड़ने के लिए
1: सकती
0: बहुत
1: इच्छा
0: बहुत
1: होगा कभी
0: धन्यवाद,
1: जाएंगे,
0: और
1: हम
0: हम
1: गाँव में
0: आशा
1: नहीं
0: करते हैं
1: गए
0: कि
1: हैं
0: आप
1: गाँव
0: जो है
1: पे।
0: वो उन संस्थानों से आगे जुड़ते रहिए और आपको भी कभी ये मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
6: इसी के साथ श्रोताओं, चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो।
7: हेलो
6: जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
7: मेरा नाम मनोहर गोयल है।
6: जी जी मनोहर जी, तो जैसा कि आपने हमारा आज का जो सवाल है वो सुना ही होगा।
7: जी
6: जी, तो आपने कभी अपने लाइफ में जो है वो ब्लड डोनेट किया है?
7: हाँ, मैंने 4-5 बार किया है अपना ब्लड।
6: जी जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा ब्लड डोनेट करने को लेकर?
7: कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, करना चाहिए मेरे हिसाब से ब्लड डोनेट।
6: जी जी,
7: और 40-45 की उम्र से पहले ब्लड डोनेट करना चाहिए।
6: जी जी बिल्कुल। और आजकल एक मनोहर जी, हमने ये भी चीज़ देखी है कि वैसे तो काफ़ी सारे लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी सारे युवा है वो रक्तदान को लेकर जो है वो जागरूक नहीं है, तो उन्हें जो है वो इंस्पायर कैसे किया जा सकता है?
7: नहीं, वो एक्चुअली ये कैंप अगर जो लगते हैं जी जी होते हैं काफी लोग।
6: जी जी,
7: और हम लोग भी जैसे कई बार यहाँ पाल बालाजी में लगते थे कैंप।
6: जी जी,
7: तो वहाँ भी जाके दे दिया थे।
6: जी जी,
7: और अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये देना चाहिए।
6: जी जी, तो आपके परिवार में मनोहर जी आपके अलावा
7: महसूस करता है?
6: जी जी, तो आपके अलावा जो है वो आपके बच्चे या फिर आपके जो रिश्तेदार है वो भी ब्लड डोनेट करते हैं?
7: हाँ, मेरे बेटे को भी मैंने 1-2 बार कैंप में भेजा है।
6: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो अपने बेटों को भी जो है वो इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं।
7: जी जी,
6: और साथ ही साथ
7: एक चीज मैं सर पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से।
6: जी जी,
7: ये एक्चुअल में हम लोग जैसे ये ब्लड संस्थाएं वगैरह करती है डोनेट।
6: जी जी,
7: लेकिन जरूरत पड़ने पे कई लोगों का पैसा लगता है इसमें।
6: जी,
7: और वो पैसा भी बहुत ज्यादा होता है।
6: जी जी,
7: तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए।
6: बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए होना चाहिए। वैसे तो ये सेवाएं जो है वो बिल्कुल निशुल्क ही रहती है, कि किस तरीके से जो है वो, ये एक तरीके की मेरा मानना है मनोहर जी कि ये मानव सेवा है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम किसी की जान बचाएं जितना हमसे हो सके।
7: अप्रोच जिसकी होती है, किसी की पहचान होती है, वो तो अरेंज कर लेते हैं।
6: बिल्कुल,
7: जिसका कोई नहीं है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मनोहर जी, तो आपका जो ये मैसेज है वो हम डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोहर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक
6: यू। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो। हेलो।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, कहते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ यूनिट खून की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव के दौरान या कैंसर के इलाज, थैलेसीमिया और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो मरीजों के लिए भी जो सेफली ब्लड की सप्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके द्वारा दान किया गया एक यूनिट खून जो है वो कई सारी जिंदगियां बचा सकता है। और इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो हेलो
4: हेलो
3: जी सर, नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
4: हेलो
3: हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें?
4: नंद किशोर चौहान, प्रताप नगर से सर।
3: जी जी, नंद किशोर जी। तो नंद किशोर जी, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में जो है वो ब्लड डोनेट करके जो एक्सपीरियंस, कभी ऐसा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं?
4: हाँ सर, तीन एक बार किया सर।
3: जी जी, आपने तीन बार किया है।
4: हाँ सर।
3: जी, तो ब्लड डोनेशन करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ नंद किशोर जी? आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील हुई? जी, क्योंकि एक माइंड मेकअप होता है कि नहीं, मैंने जो है वो उस इंसान की ज़िंदगी बचाई जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, या जिसे जानता हूँ तो मोस्ट ऑफ यही रहता है कि जिसे हम नहीं जानते, किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी जो है वो बचाने के लिए हम डोनेट करते हैं। जी जी, तो आपने जो तीन बार, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो आपने हर वर्ष किया या फिर अभी तक जो है वो आप अपने पूरे करियर में जो है वो तीन बार ही किया?
4: चार पाँच साल में तीन बार किया।
3: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो अपनी तरफ से जो भी अपना कंट्रीब्यूशन है वो संस्थानों को दिया, इसके लिए तालियां होनी चाहिए।
4: जी सर,

तो श्रोताओं, आज का जो एक कार्यक्रम है वो काफी बेनिफिशियल रहा हम सभी के लिए, जहां पर आपने सुना एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू कि किस तरीके से उन्होंने जो एक्सपीरियंस है अपने और लोगों द्वारा किए गए वो शेयर किए उन्होंने। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सके आप ब्लड डोनेट कीजिए, और कहते हैं कि हर 3 महीने में एक बार जो है वो इंसान को ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारी जो भी कोशिकाएं हैं RBC जो है वो वापस जो है वो नए सिरे से बनने लगती है, तो एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की मदद भी कीजिए। और इसी के साथ जो है हम सभी जानते हैं कि शाम के ठीक 6 बजने वाले हैं और अब हमें लेनी होगी आपसे इजाज़त। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की मदद कीजिए। धन्यवाद।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुने पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं।

0: बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रूपये की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focuses on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Pala the Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
1: External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys Founder Narayan

आइए पहले नज़र डालें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय पर। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 7 बजे से। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे मैच की समाप्ति तक। ये थे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम, और अब सुने हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। कल आप सुनेंगे 27वां भाग। कल रात 10 बजे सुनेंगे खेल जगत, जिसे हम जयपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दिन में 2:30 पर। कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम की 1306वां भाग। सुगम संगीत सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर, दिन में 12:30 पर और रात 9:15 पर। लोक संगीत सुनवाएंगे हमारे स्थान केंद्र से कल सुबह 10 बजे और दिन में 12 बजे। चौपाल कार्यक्रम सुनेंगे कल शाम 7 बजे और शाम 7:30 पर। समय रहेगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज का।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनेंगे कल सुबह 7 बजे। विभिन्न विषयों की रोचक जानकारी से भरा मनोरंजक कार्यक्रम नमस्कार लेके आएंगे आपके लिए कल सुबह 8:30 पर। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी होगा हमेशा की तरह कल शाम 7 बजे, और महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी गणगौर कल दिन में 1:15 पर।

किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत होगा कल दिन में 1:05 पर। कल किसान भाई सुनेंगे बरसात पूर्व सफेद लट का समेकित प्रबंधन पर चर्चा। फिल्म संगीत सुनेगा कल सुबह 6:45 पर, सुबह 11 बजे, रात 8 बजे, रात 9:30 पर और रात 10:30 पर। श्रोता, ये थे हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में जानकारी।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताएं सुने देशकान।

0: अभी आपने समूह स्वरों में सुना देश गान। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: कृष्ण प्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधि मण्डल स्तरीयां वार्तां कृतवान्। अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहभागितायाः अधिक सुदृढ़ीकरणे बलं दत्तम्। रक्षा प्रविधि व्यापारादिषु क्षेत्रेषु सहकार्य विस्तारस्य विषये उभाभ्यां नेतृभ्यां विचार विमर्शः कृतः। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः मैक्रों इत्येषः वैश्विक नवोन्मेष शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां कृतवान्। सः अवदत् यत् अद्य प्रश्नः नास्ति यत् भारतं नवोन्मेषं करोति न वा, अपितु प्रश्नः अयमस्ति यत् भारतेन सह नवोन्मेष कार्ये कः सहभागी अस्तीति। आयुष मन्त्रालयः अद्य यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम इत्यस्मै सर्वाधिक दर्शकाणां कृते नूतनां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखं निर्मितवान्। अपि च आईसीसी महिलानां टी20 विश्वकप इति क्रीडायां भारतम् अद्य सायंकाले वर्मिंघम नगरे पाकिस्तानं विरुध्य स्वकीयाभियानम् आरप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रों इत्येषः च अद्य नीस नगरस्य पॉलेस दे एक्सपोजिशन्स इत्यत्र भारत इनोवेट्स इति कार्यक्रमस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ताञ्च कृतवन्तौ। भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षान्तर्गतम् आयोजितः अयं प्रमुखः कार्यक्रमः उभयोः देशयोः शीर्ष नवान्वेषण आरम्भान् वेंचर कैपिटल्स निधि इत्येतञ्च समाकलयति। कार्यक्रमेऽस्मिन् उन्नतगणनं

0: सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादिषु त्रयोदश प्रमुखेषु क्षेत्रेषु नवान्वेषणानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण भारत फ्रांस देशयोः सम्बन्धस्य बलविषये अवधानं दत्तम्। सः अवदत् यत् यद्यपि बहवः देशाः व्यापारे सामरिक सहयोगे च निमग्नाः सन्ति, तथापि केवलं कतिपयाः सम्बन्धाः एव समानदृष्ट्या समानहितैः च मार्गदर्शिताः भवन्ति। सह भारत फ्रांस सहभागित्वं एतादृशं एकं चिरस्थायी सम्बन्धम् अस्ति यस्य मूलाधारः परस्पर विश्वासः, सहभागी मूल्यानि, भविष्यत्कालाय सामान्य दृष्टिः च वर्णितवान्। सः अवदत् यत् नवान्वेषणं प्रौद्योगिकी भारतस्य यूनाम् आकांक्षाः, देशस्य परिवर्तनस्य, भविष्यनिर्माणस्य च चालकभूताः सन्तीति उक्तवान्।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: सभाम अभी संबोधयन फ्रांस देश से राष्ट्रपति मैक्रों वर्य अवदत् वैश्विक नवोन्मेषण शक्तिरूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां सः कृतवान्। सः अवदत् यद् अद्य प्रश्नः नास्ति यद् भारतं नवोन्मेषं करोति वा न वेति, अपितु प्रश्नः अयमस्ति यद् भारतेन सह नवोन्मेषकार्ये कः सहभागी भविष्यतीति। अस्य वर्षस्य आरम्भे मुम्बईनगरे प्रारब्धस्य भारत फ्रांस नवान्वेषण वर्षस्य उल्लेखं कुर्वन् श्री मैक्रों वर्यः अवदत् यद् भारतस्य प्रमुखाणां नवोद्योग संस्थानां नवान्वेषकाणाञ्च प्रदर्शनार्थं निवेशकैः उद्यमपतिभिः सह सहयोगं प्रवर्धयितुं सहभागी देशत्वेन चितः इति फ्रांस देशः गौरवान्वितः अस्तीति। अस्मिन् अवसरे विदेश कार्यमंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शक अजीत डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक परामर्शक अजय कुमार सूद, इन्फोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति, अनेके व्यापार प्रमुखाः च उपस्थिताः आसन्। दिनानन्तरं प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मैक्रों च भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वस्य प्रगतिं समीक्षितुं, प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक विषयान् चर्चयितुञ्च द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यतः। आयुष मन्त्रालयेन अद्य नूतनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इति विश्व अभिलेखः निर्मितः। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम अर्थात प्रत्यक्ष प्रसारित योग सत्रे सर्वाधिक दर्शकाणां सहभागितायै आयुष मन्त्रालयेन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानस्य हाववील्ड संस्थायाश्च सहयोगेन अद्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य 26 उत्तर 2000 वर्षस्य उत्सवानां भागरूपेण वैश्विकं ऑनलाइन आभासीयं योगसत्रम् आयोजितम्। अस्मिन् वैश्विक ऑनलाइन योगसत्रे आयुष मन्त्रालयः 35,000+ सत्यापित दर्शकाणाम् अभिलेखं स्थापितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य बेंगलुरूनगरे विकसित भारत संकल्प समावेशं सम्बोधयन्ती अवदत् यत् कर्णाटक राज्यं यूपीए शासनकालस्य अपेक्षया पञ्चगुणितम् अधिकं केन्द्रीय कर विभाजनम् अवाप्तवत्। वित्तमन्त्री अवदत् यत् कर विभाजनस्य माध्यमेन राज्याय 4,00,000 कोटि रूप्यकाणि प्राप्तानि। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणाय, रेल संरचना विकासाय, बेंगलुरू चेन्नई औद्योगिक सम्पथ परियोजनायै, पुनर्नवीकरणाय, ऊर्जा परियोजनायै केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्यमन्त्री शोभा करन्दजाले करन्दलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे सारितः। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मन्दिरे दर्शनानन्तरं सा अवदत् यत् एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः द्वादश वर्षीय कार्यकाल पूर्णतायाः तथा च देशस्य दीर्घकालं निरन्तरं सेवमानस्य प्रधानमन्त्रिणः स्मरणार्थं कृतास्ति।

0: मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री मोहन यादवः अद्य सागरमण्डले राज्यस्तरीय कार्यक्रमे लाडली बहना इति योजनायाः सप्तत्रिंशत्तम सहयोगांशस्य वितरणं कृतवान्। सम्पूर्णे राज्ये सपादैक कोट्यधिकानां महिला लाभार्थीनां वित्तकोषेष् प्रत्यक्षतया पञ्चत्रिंशत् अधिक अष्टादशशत कोट्यधिक रूप्यकाणि प्रेषितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व रक्तदातृ दिवसस्य अवसरे जनानां स्वैच्छिक रक्तदानाय आह्वानं कृतवान्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारिते सन्देशे तेन उक्तं यत् रक्तदानं कस्यचित् व्यक्तेः जीवन रक्षणस्य तथा नूतन जीवन प्रदानस्य सर्वाधिकं प्रभावी पावनञ्च माध्यमम् अस्ति। ओमानदेशे भारतीय दूतावासः अवदत् यत् प्रायः चतुर्दश भारतीयान् वहत् भारतीय ध्वजारोहितं यान्त्रिक नौकायानं विराट वन इत्यस्मै ओमानदेशस्य तटे यन्त्रस्य विफलतायाः अनुभवः अभवदिति। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूतावासः सूचितवान् यत् सम्प्रति ओमान अधिकारिणां समन्वये समीपस्थैः नौकायानैः उद्धारकार्यं प्रचलतीति। ऑस्ट्रेलिया देशः स्वस्य फीफा विश्वकप 2026 इत्यभियानस्य आरम्भं साफल्येन समारभत। स्वस्य ग्रुप डी इत्यस्य आरम्भे तुर्कीये इत्येनं देशं 2-0 पराजयत्। ह्यः स्कॉटलैंड देशः मैसाचुसेट्स नगरे ग्रुप सी इत्यस्य आरम्भे हैती देशस्य उपरि 0-0 उत्तरे एकांकेन कठिन संघर्षे विजयं प्राप्य ग्रुप सी मध्ये अग्रस्थानं प्राप्नोत्। तस्मिन्नेव समूहे अन्यत्र पञ्चवारक विजेता ब्राजील देशः न्यू जर्सी नगरे मोरक्को देशेन सह एकैकांकाभ्यां समांकीय स्थानं अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजवास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला टी20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 वादनतः आरप्स्यते। महिला टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेष् 16 स्पर्धास् 13 स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ

0: विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। उन दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
2: देखो, जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति मारा बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
1: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए

भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

0: सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा।

रहा है और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंडे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योग अभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रिया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री समस्यावारो मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज नींस माए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरू उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस माए राख्या इन कार्यक्रम माए दूजा देशा रा शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस रा मजबूत संबंधा रो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवाना री आकांक्षावा देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे रही है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भारत रे बारे इन विशेष पहल री मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां सु संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हल्का माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रो आजादी रे पछे भारत रा सबू लंबा टेम ताई निर्वाचित प्रधानमंत्री बनबा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेतावारे बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा माथे चर्चा चल रही है, जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेड़ो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी माए सरकारी उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं प्रचार प्रसार करियो जा रही है। सिरोही जिला मुख्यालय माथे चल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो। इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया। अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई जी प्रदर्शनी रो प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जायजो लीनो। इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शियो नी जावेला। खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रहेला।
2: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसने भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा री कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 बरस माए भारत विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण हल्का माए घनी तरक्की करी है। वे कया के मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रा मंत्र रे सागे काम करियो है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा। भारत

0: का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
1: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथे राख्या एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,000 लोग भाग लेना। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया के ओ उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है। बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बनावारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोल ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। राज्य सरकार प्रदेश में राख्या जा रिया ग्रामीण सेवा शिविरा में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार री पोस्टिंग रो अधिकार दियो है। 12 जून सु सरुविया इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीकाओं करवा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दीनो है। जनता सो जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करवा और योजनावारो फायदो हरेक जना तय पुगावा खातर सरकार यो कदम उठायो है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार खेतर माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला। इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है। खातेदारारा जमीन सु जुड़िया मामला और अभिलेखा में गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण सु जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायतारा सीमा ज्ञान दी शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है। सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है। राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है। नया नियमा रे मुजब अबे नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला। पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिन जिला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है उनमाए अबे सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे पछे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला। पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पछे नवीनीकरण करवा कोई प्रावधान नहीं हो बासु राज्य की करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नहीं हो जिन वजह सु नमक उत्पादक घना परेशान हा। राज्य सरकार कानियों इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादका ने राहत दी गई है। सरकार इन फैसलाओं नमक हल्का माए निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माए वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माए बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत किया कि राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्कारा ने जैविक और प्राकृतिक खेती री कानियों जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई। जावर माइंसरा सामुदायिक भवन माए राखी जी इन कार्यशाला माए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना। इन मौके कास्कारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करबाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश में प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर उलारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ एक थोड़ा माथे बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य रा पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सागई शेखावाटी खेतरा जिला माए कई थोड़ा माथे आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसु कई थोड़ा माथे हल्को में बरस बसु दिन और रात रात तापमान माए गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश रा 9 जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। वठीने जैसलमेर रे अलावा सगला जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वेवासु गर्मिया री छुट्टियां रे चालता प्रदेश री सैर सपाटा री थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाला कुछ एक दिनाओं घरेली सैलानिया री तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौड़ आबूराज माए आदिना राजस्थान रे साके ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाकाल सिरोही खबर नबी सु।
2: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ

0: प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
1: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप एरो ऑफ बकिंगम में एज वेस्टर्न में भारतीय टीम रे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचा में भारत हाल तई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला में हरा चुकियो है। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज प्रदेश भर में एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व बारा में जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर बारा लगत सू न्यारा न्यारा संगठन और संस्थाना री कानियों कार्यक्रम रखा गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सपाखाना में सम्मान समारोह रखियो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार रख्या। भीलवाड़ा में रेडक्रॉस सोसायटी री कानियों रख्या कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबरां एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर माए जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगारी समस्यावारो मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज। पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर।
3: जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना गिर बैग।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई
2: ओम्बुड्समैन। श्रोता, इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए आपको ले चलते हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण सुनने के लिए।
6: Want the batter to step out and alter the length of the bowler. That is what Pakistan are looking at. In fact, it looks like they're going to start off with a spinner. By the looks of it, it's going to be Sadia Iqbal who is going to get us started. Sadia Iqbal, who is currently ranked number 2 in ICC Women's T20Is. She was number 1 not too long ago. And it is going to be the right-handed Shaif Ali Verma who's going to be facing the first ball. All set here at Edgbaston. In Birmingham, this is the place where the Commonwealth Games of 2022 happened and Team India came very, very close to the summit. In the end, they had to settle for the silver. But at this ground, in that tournament against Pakistan, India were able to register a one-sided victory. They got Pakistan bowled out for 99 and chased it down. However, it is going to be India batting first. First delivery on a length and Shaif Ali Verma lofts it over mid-off. It's gone for 6. The perfect start.
7: ये लगा आभा का छक्का।
6: Delivered what they call the slot ball these days, and Shaif Ali Verma is not the one to shy up on. It was not too far from the off stump. She pressed forward and lofted it using a straight bat. The ball went sailing over the long off boundary, 73 meters far. So 6 of the first ball, and immediately Sadia Iqbal responds with a dart, a quicker delivery, a fuller delivery, which forbids Shaif Ali Verma to get underneath. It is delivered in line with the middle pole, and hence Shaif Ali Verma has to plunge down a vertical bat in order to block it. 6 without loss after 2 deliveries in this match. Here comes Sadia Iqbal, left arm around the wicket for the third delivery of the over. Delivers this one from slightly wider of the crease. However, Shaif Ali Verma made a movement towards the leg side early on, trying to make room, trying to go inside out once again. But this one did not spin, rather came in with the arm, finished near about the leg stump, and hence took the inside edge off her bat and trickled away towards the mid-wicket fielder. No runs of this delivery either. 3 balls done, 6 without loss. Here comes Sadia Iqbal for the next.

0: Delivery of the over delivers this one from the corner of the crease, and this one wraps Shefali Verma on the pads. She was looking to flick it towards the leg side, probably towards square leg, however wasn't quite able to lay bat on ball. Another delivery which slanted in with the arm of the left arm spinner, hit the pad but would have obviously gone down the leg side, and hence no appeal from the Pakistan players. Next delivery of the over, Sadia Iqbal very quickly running into ball, what will be the penultimate ball. Once again, shuffles to the leg side, there's an appeal for caught behind, and Shefali Verma is out. Sadia Iqbal draws first blood for Pakistan. Delivered on a good length, Shefali Verma made that premeditated movement towards the leg side in order to give herself room, almost as if she had decided yesterday that she would be looking to loft it over cover. However, Sadia Iqbal very cleverly pulled her length back and hence was able to generate some extra bit of bounce. The replay on my monitor suggests that she left this delivery along with the seam. Therefore, she was never ever looking to get spin on it. It rather fell on the seam, generated extra bounce, scratched the outside edge of Shefali Verma's bat, and Muniba Ali, the wicketkeeper who was standing up to the stump, took it with her fingers pointing skywards. So India started off with a six of the first ball, but they've lost a wicket of the fifth delivery of the first over.
1: तो निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जिस इरादे के साथ वहां पर सादिया इकबाल को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था, वो कहीं ना कहीं वो प्लॉय वो कामयाब होता हुआ बिल्कुल, और इस गेंद पर लेग स्टंप की तरफ पहले से ही मानो हटकर वो इरादा बना चुके थे शफाली वर्मा कि उस गेंद को कट करेंगी, और बहुत ही चतुराई के साथ वहां पर सादिया इकबाल ने भी गेंद की दिशा को लेग स्टंप की तरफ रखा, और जैसे ही कट करने की कोशिश की गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, और विकेट कीपर मुनीबा अली ने कोई कोताही नहीं बरती, आसानी के साथ उस गेंद अपने दस्तानों में कैद कर लिया, और इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा झटका देने में कामयाब रहे पहले ही ओवर के दौरान भारत 6-1 विकेट के नुकसान पर।
0: जमीमा रॉड्रिग्स इज द न्यू बैटर, एंड सादिया इकबाल मिसेस हर मार्क दिस टाइम अराउंड, डिलीवर्स दिस वन डाउन द लेग साइड ऑन अ गुड लेंथ, टू फार फॉर जमीमा टू मेक कॉन्टैक्ट। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, रिमेंबर recently they had Yastika Bhatia batting at number 3, who is a left-hander. Obviously Pakistan have two left-arm spinners, so the left-hander can be very useful in modern day cricket to counter the left-arm spinner. However, today India have left left-handed Yastika Bhatia out. Meanwhile, Sadia Iqbal delivers this one in line with the stumps on a good length, presses forward as Jemima Rodrigues and wards it off towards extra cover. End of the first over, 7 for 1.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: अरे माँ, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जमीमा रॉड्रिग्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं, और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत, और स्ट्राइक रेट लगभग 129 की। काफी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से, और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा, और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने, और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया, और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जमीमा अगली गेंद का सामना करेंगी, और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगी या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगी। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहां पर, ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना, और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जमीमा रॉड्रिग्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना, जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में नेट प्रैक्टिस के दौरान, ना घुटने पे गेंद आकर के लगी थी और काफी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगले गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया, लेकिन

0: मैदान पर फील्डर मौजूद हैं, बाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है।
1: And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodrigues stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
0: अच्छे कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई और निश्चित रूप से जमीमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ पर फातिमा साना जरूर प्रसन्न है कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना, टीम की कप्तान पाकिस्तान की, एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नजदीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती है, उस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली तीन गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जमीमा रॉड्रिक्स, अब तक चार गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है। शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया, ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर, सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर, लेकिन स्टंप के आसपास कहीं भी गेंद नहीं थी और डाइव लगाते हुए जमीमा ने अपना इस मैच का पहला रन पूरा किया। भारत 9 एक विकेट के नुकसान पर।
1: थ्री थिंग्स हैपेंड देयर आशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल the ball went to mid-on where Alia Riaz fielded it. She hit the ball towards the stump. She hurled it towards the stumps, I should say. And the ball did not hit the stumps. Rather, it hit Jemima. Before that, whilst Smriti Mandhana was taking the run, she had to go around the baller. Fatima Sana, in order to try and field the ball, came in her way, which is interesting. It could spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over, onto the body line, delivered on the shorter side of good length, allows Smriti to pull it towards the long leg fielder where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, two overs done. 10-1, our team India.
0: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र तीन ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है। अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का। तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है, क्या सादिया इकबाल ही गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी या फिर फातिमा साना वहां पर कोई गेंदबाजी में परिवर्तन करना पसंद करेंगी, देखना निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होगा। आज यास्तिका भाटिया को टीम में जगह नहीं मिली है और उनकी जगह पर भारतीय फुलमली को टीम में रखा गया है। हालांकि यास्तिका अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन आज टीम में उनकी जगह नहीं बनी है। सादिया इकबाल गेंदबाजी के क्रम को जारी रखेंगी, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज, ओवर द विकेट, ये गेंद थोड़ा सा फ्लाइटेड ऑफ स्टंप की तरफ, स्मृति मंदाना ने फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को हल्के से पुश किया, ऑफ साइड में गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। तीसरा ओवर प्रगति पर, टॉस जीतकर पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है इस मुकाबले में। भारत का ये पहला मुकाबला है इस आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का और पाकिस्तान के लिए भी ये पहला मुकाबला। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, डाइव करके रोकने की कोशिश जरूर की थी वहां पर आलिया रियाज ने, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकते हुए सीमा रेखा से बाहर चली गई चार रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: फील्डिंग में चूक जहां पर शायद दो रन हो सकते थे, दो रन अतिरिक्त भारत के खाते में जोड़ते हुए इन दो रनों के चार रनों के साथ भारत 14 एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नजदीक जाकर हल्के से पुश किया कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। स्मृति मानधना से काफी उम्मीदें हैं। यदि आप स्मृति मानधना को देखें तो एक शतक भी उनका टी20 मैचेस में अब तक

0: नजर आता है। इसी बीच अगले गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मांधना, और इस ओवर में अब तक दो चौके वो लगा चुकी हैं। कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं। दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन दो चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। अंतिम गेंद लेकर सादिया एक बार फिर से तैयार। 30 वर्ष की उनकी उम्र और ICC रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति हुई।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: So 18 for 1, half of the power play done, 3 overs done, 18 for 1 India at the loss of the wicket of Shefali Verma. And looks like Tasmia Rubab has now been summoned by Captain Fatima Sana. Tasmia Rubab, who's a left-arm seamer and a bit of an unknown quantity, because she's today playing only her third T20I, and she has played 2 matches before this, one in this year, the other one back in 2024. So she's a bit of an unknown quantity. Wears number 10 on her back. Runs into ball this one from over the wicket. Full length delivery. Jemima Rodrigues drives this one towards mid-on and runs down in the search of a single, which Smriti Mandhana thought was non-existent. And hence Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home. And after that, holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on and Smriti Mandhana did not see the need to run. Rodrigues says that it was her fault. However, this shows a bit of desperation. Next delivery, she goes for a big shot and completely miscues it. And the catch has been put down. No! Takes it on the second attempt. Does Natalia Parvez, and India lose their second wicket. This was delivered on the fuller side of good length. It was angling away from the right-hander, not too far from the off stump. And for some reason, Jemima Rodrigues, who had faced 5 dot balls before this, that desperation was showing. She pressed forward and tried to hike it, tried to slog it. That is not her strength. She's known for playing those straight-batted shots, a technical sound player. However, she went for a slog. The ball hit the outer half of the bat, went straight up, and Natalia Parvez ran in a few steps from extra cover, settled underneath it, yet she juggled it. She did not catch it on the first attempt. The ball popped out of her hand and she grabbed it on the second attempt. The score is 18 for 2 after 3.2 overs. The start for India has not been great.
0: निश्चित रूप से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है टॉस जीतकर। जिस तरह की उम्मीद थी भारत को कि टॉस जीतने के बाद भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगा और शुरुआत से ही कुछ तेज तर्रार अंदाज में रन बटोरेगा, लेकिन यहां पर भारत की शुरुआत तो जरूर अच्छी हुई। पहले ओवर की पहली गेंद पर शफाली वर्मा ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका विकेट चटकाने में सादिया कामयाब रही थी पहले ही ओवर के दौरान, और इस समय एक और झटका भारत को चौथे ओवर के दौरान लग चुका है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जब जेमिमा रॉड्रिक्स वापस पवेलियन लौट चुकी हैं, और कहना होगा कि अब यहां पर थोड़ी बहुत मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या यहां से भारतीय पारी को संभालने में कामयाब रहेंगी हरमनप्रीत कौर? और हालांकि बल्लेबाजी के लिए अभी काफ़ी अच्छा खासा लाइनअप है भारत के पास, लेकिन फिलहाल जो तमाम दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हरमनप्रीत कौर के पास है। हरमनप्रीत कौर जो कि एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि 10वां विश्व कप खेल रही हैं, और साथ ही साथ

0: पांचवा ऐसा अवसर जबकि वो कप्तानी कर रही हैं T20 विश्व कप में, आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और जो एक दबाव होता है पहले रन का, उसे अपने आप को उससे पूरी तरह से मुक्त कर लिया वहां पर दर्पण।
1: Well, I've got to say that Tasmia Aruba was a bit generous, delivered a half volley on her pads, and therefore Harmanpreet Kaur was able to tuck it towards square leg and pick up that comfortable single. So captain and vice-captain out there in the middle. Remember, the innings started with a first ball six. Shefali Varma today became the first batter to hit a first ball six in a World Cup match in women's T20 cricket. However, after that, Pakistan have come back well. They have dismissed Shefali, they have dismissed Jemima. India are 19 for 2 after 3.5 overs. Two fielders allowed outside the 25 yard circle in the first 6 overs. Currently they are deep backward square leg and deep backward point. Smriti Mandhana to face. This one is delivered on a length outside the off stump, and in a very measured manner Smriti plays it away from the body but in a very controlled manner towards cover. She has looked steady, she has looked sturdy, she has hit a couple of boundaries already, but the important thing is that Smriti Mandhana has not looked rushed, unlike the other two batters who have gotten out. Next delivery from Tasmia, delivers this one on a good length and it nips back in sharply. However, Mandhana had it covered. It finished near the middle end leg, 106 kilometers per hour, which means Tasmia is pretty brisk. However, Mandhana was able to tuck it towards the gap at square leg and pick up a comfortable single. Harmanpreet Kaur today is playing her 40th match in a T20 World Cup, and she's among the top 5 players when it comes to most matches played in this World Cup, the T20 format in women's cricket. Meanwhile, the next delivery, a slower one by the looks of it from Tasmia Rubab, angled away and finished outside the off stump. However, Harmanpreet was able to get her bat behind it and nudge it back towards the bowler. Fourth over done, 20 for 2, Team India.
0: So Harmanpreet ne wahan एक रन बनाने के साथ ही 727 रन बना लिए हैं T20 विश्व कप में, जो कि भारत की मिताली राज के 726 रन से अब एक रन आगे हो गए हैं। तो T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का श्रेय अब हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज हो चुका है। और हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए छठा अवसर था, जबकि वो एक के स्कोर पर अपनी 127 पारियों में अब तक आउट हुई हैं, और 37वां ऐसा अवसर जबकि वो सिंगल डिजिट में आउट हुई हैं। तो जेमिमा के लिए निश्चित रूप से ये मैच याद रखने वाला निश्चित रूप से नहीं है, हालांकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए, और ओडीआई विश्व कप की बात करें तो वहां भी उनका प्रदर्शन काफी शानदार था, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई शमीम इस समय स्थान पर हैं सादिया इकबाल के, और देखना यह है कि क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और सफलता हासिल कर पाती हैं। शमीम तैयार, इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: साहिरा जमीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी, लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी, फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी, और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। जानते थे कि वहां फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मानसना ने। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से।
1: Now, the interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off-spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off-breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner, and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2, Smriti Mandhana facing.
0: अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम, और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर दंदनाते हुए 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद और

0: 28 रनों में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। भारत जैसा कि आप जानते हैं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एजबेस्टन पर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में। एक बार फिर से तैयार वहां पर रमीन शमीम बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल ली और इस एक रन की मदद से हरमनप्रीत ने अपने और अपने टीम के खाते में 1 रन का इजाफा किया बल्कि स्मृति मंदाना थी माफ कीजिए वहां पर और इस 1 रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा अब 20 पर। तो 14 गेंदों में 20 रन स्मृति के। हरमनप्रीत तैयार हैं इस समय अगली गेंद का सामना करने के लिए।
1: The good thing is Smriti has looked good. They brought in the off spinner probably to counter the left hander, but she has looked unhurried and she has already struck 2 boundaries. Now over to Harmanpreet who gets a flighty delivery which was delivered from over the wicket just 70 kilometers per hour. So good air given there by Shamim. However, the length allowed Harmanpreet to get onto the front foot, push it towards long on and pick up a single. 30 on the board now for India. One ball remaining in the fifth over. Around the wicket goes Shamim and delivers this one with a round armish action, tries to deliver the quicker one, however once again in a very unhurried languid manner Smriti taps it towards extra cover. No runs to be had of that delivery. This over produced 10, 30 for 2 after 5.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: फातिमा साना एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर वहां पर नजर आ रही हैं। भारत ने पावर प्ले के पहले 5 ओवर में अब तक 30 रन बनाए हैं और 2 विकेट भारत अब तक गवा चुका है। फातिमा साना नए ओवर की शुरुआत करते हुए दाएं हाथ से ओवर द विकेट कप्तान हरमनप्रीत के लिए और हरमनप्रीत के लिए गेंद ऑफसाइड से काफी ज्यादा बाहर थी। पैर को आगे की तरफ निकालकर उस गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं और गेंद को वहां पर विकेटकीपर ने आसानी के साथ अपने कब्जे में कर लिया। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर हरमनप्रीत ने 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाए हैं। 15 गेंदों का सामना करने पर के बाद स्मृति ने अब तक 20 रन बना लिए हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। आज अपेक्षाकृत अगर देखें तो अन्य किसी भी भारतीय बैटर की अपेक्षा वो ज्यादा बेहतर आत्मविश्वास से खेलती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच वहां पर तीसरे अंपायर का कॉल आता हुआ कि फातिमा साना की पिछली जो गेंद थी वो नो बॉल थी, तो यहां पर फ्री हिट भारत के लिए। क्या उसका भरपूर लाभ कप्तान हरमनप्रीत कौर उठा पाएंगे? दाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार ये गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की थी और गेंद को वहां पर मोड़ दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़कर के भारत का 32, 2 विकेट के नुकसान पर। फातिमा साना की अच्छी गेंदबाजी कोई अवसर नहीं दिया कि बड़ा हिट लगा सके वहां पर हरमनप्रीत।
1: राइट, फातिमा साना is turning out to be impressive and the interesting thing was that the wicketkeeper was standing up to the stumps for Harmanpreet Kaur. We have seen in the past that when Fatima began bowling the keeper was standing back and now she goes back again for Smriti Mandhana who has taken strike, delivers this one on a good length, angled away towards the imaginary fourth stump. Mandhana uses a vertical bat to tap it towards mid off and picks up a comfortable single. Meanwhile, a good news coming from the land of Turkey where World Cup Stage 3 of Archery is currently underway and the good news is that in the men's recurve individual event, Dheeraj Bomadevara of India has won a gold medal. So congratulations to entire country, congratulations to all Indians, congratulations to all sports fans. We are expecting a lot from Dheeraj Bomadevara who missed out on an Olympic medal, finished fourth in the mixed team event alongside Ankita Bhakat at the Paris Olympics. Meanwhile, back to this game, 33 for 2 India after 5.2 overs. Last over of the power play underway. Fatima Sana once again has called the keeper up to the stumps as Harmanpreet Kaur is on strike. She stands there with an open stance, good length delivery, angled in towards the middle and off stump. And Harmanpreet plays it with soft hands, just bunts it towards the front of square leg, calls for a prompt single.

को और इस एक रन की मदद से भारत अब 40 दो विकेट के नुकसान पर। स्मृति पहुंची 26 पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद। इसमें 5 चौके शामिल हैं। हरमनप्रीत 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद का ओवर द विकेट शमी माती हुई फ्लाइटेड गेंद, एक कदम आगे निकालकर इस गेंद को हल्के से बैक टू द बॉलर पुश किया। गेंद को वहां पर अपने दाईं तरफ जाकर फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को एक बार से फिर से ध्वस्त कर दिया। 40 पर अभी भी टिका हुआ भारतीय टीम का स्कोर। फील्ड प्रेसिंग का मुआयना काफी बारीकी से कप्तान हरमनप्रीत ऑन साइड पर करते हुए, क्या अगला शॉट उस दिशा में आएगा और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए हल्के से पुश करा ऑन साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं 30 गज के दायरे के अंदर। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। अंतिम गेंद का आना बाकी है रमीन शमीम की। रमीन शमीम क्या कुछ कर पाएंगी इस अपनी अंतिम गेंद पर, देखना दिलचस्प होगा। रनों की औसत रफ्तार भारत की अब 6 से लुढ़क करके 5.85 रन रह गई है। अगली गेंद और इस बार गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर हल्के से गेंद को पुश किया।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखे नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे रात भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
1: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं है।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
3: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
3: हा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान लें हम भाई, अपने खुशी गमी में पूरे गांव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
3: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई, इसी दावत

0: के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
0: हाँ हाँ, रूप सिंह।
1: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोट्टे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
0: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा?
1: हाँ, बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है, समझो।
0: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो डाली चुके हो।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाको चने चबवा दूंगा।
0: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
0: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा हूँ।
1: अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
0: अच्छा,
1: राम राम।
0: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
0: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ पुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूआ, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान
3: है, क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
1: अरे मंगरू
3: तो क्या बात है माधो,
4: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ ओ, ओ, ओ, देख माधो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
4: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है मैं भी आता हूँ।
5: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिराजी।
5: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
5: मेरी रकम दे रहे हो ना
3: जी।
5: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
5: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
5: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरह आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
3: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मदद और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा धर्म से। धर्म
5: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
3: चौधरी जी मालिक मालिक
5: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला
3: दूंगा। चौधरी जी नहीं, कुछ भी दया कीजिए, दया कीजिए।
5: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
3: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके।
6: मंगरू
3: पटवारी जी,

0: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3000।
0: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
0: हाँ मैं। मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
0: अच्छा भैया, जय राम जी।
2: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
0: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
2: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
0: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगलू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
2: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
0: और एक भूल तुमने और भी की
2: है?
0: जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
2: वो क्या पटवारी जी?
0: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
2: पर गलती उसी की पटवारी जी।
0: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो, और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
2: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
0: देखो
2: क्या करूँ,
0: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
2: लेकिन
0: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा।
2: ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
0: कौन से रुपए भाई?
2: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
0: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
2: काहे?
0: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
2: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
0: अच्छा ये लो मंगरू।
2: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
0: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर है मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
2: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
0: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
2: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
0: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
2: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
2: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
2: अच्छा,
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
2: 11,000?
0: हाँ भाई,
2: सच कह रहे हो पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ, और रुपया मिल जाने के बाद।
2: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
2: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी।

0: Kakaç keçi ver. Kakaç keçi ver. Kakaç keçi ver.
1: अजी मैंने कहा अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
0: आ गए पंडित जी,
1: चलिए
0: आइए पटवारी जी, आइए आइए,
2: चलो चलो चलो।
3: कागज के जेवर हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

0: जाता है। दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।

0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र

0: मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन-जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस

में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आरडी बर्मन का है।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। माँ के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

राजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

0: आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: सपने झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: बिन।
1: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
2: आज के फनकार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का, फिर क्यों उदास हो तुम।

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी समाचार, मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर

0: चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More